जहाँ शब्द बसे मन माहे, आप गया भ्रम पहु गया, जन्म मरण दुख जाहे, गुरमत अलख लखाइए, उत्तम मत तराय, नानक सोहंग हंसा जप जाप हो, त्रे पवन तिसे समाहे, महला तीजा, मन माणक जिन परखिया, गुर शब्दी विचार, से जन विरले जानिए है, कल युग विच संसार, आपै नो आप मिल रहिया, हम मैं दुबदा मार, नानक नाम रते दुत्तर तरे, भौजन बिकम संसार पौड़ी, मनमुख अंदर ना पालनी मुठे अहमते, चारे कुंडा भव थके, अंदर तिख तत्ते, सिमरत सास्त ना सोधनी, मनमुख वे गुत्ते, बिन गुर किने ना पायो, हर नाम हर सत्ते, तत् ज्ञान विचारिया, हर जप हर गते, सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप, आपे आने रास, किसे अग्गे नानका, खले की चै अरदास, महला पहला, जिन किया तिन देखिया, आपे जाने सोए, किसनो कहिए नानका, जा घर वरते सब कोए पौड़ी, सबे थोक वसार इको मित कर, मन तन होए निहाल, पापा दह हर, आवन जाना चुके, जन्म ना जाहे मर, सच नाम आधार, सोग ना मोहे जर, नानक नाम निदान, मन मह सांझ धार, सलोक महला पंजवा, माया मनो ना विसरे, मांगे दम्मा दम, सो प्रभ चेतना आवई, नानक नहीं करम, महला पंजवा, माया साथ ना चलई, क्या लपटाव है अंध, गुर के चरण त्याए तू, टूटे है माया बंद पौड़ी, पाणे हुक्म मनायन, पाणे सुख पाया, पाणे सतगुर मेलियन, पाणे सच त्याया, पाणे जेवड़ होर दात नाही, सच आख सुनाया, जिनको पूर्व लिखिया, तिन सच कमाया, नानक तिस शरणागती, जिन जगते उपाया, सलोक महला तीजा, जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पै की नाही बिंद, नानक मुया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद महला तीजा, मन की पत्री वाचनी, सुखी हूं सुख सार, सो ब्राह्मण भला आखिए, जे बूझे ब्रह्म विचार, हर सलाहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रवान है, जे कुल का करे उधार, अग्गे जात ना पुछिए, करनी शब्द है सार, होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, विख्या नाल प्यार, अंदर सुख ना होवे, मन मुख जन्म खुआर, नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार पौड़ी, आपे कर कर वेखदा, आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझै खसम का, सोई नर कच्चा, जित पावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है, गुर शब्दी रच्चा, गुरमुख सदा सलाही है, सब तिस दे जच्चा, ज्यो नानक आप नचाएंदा, ते वही को नच्चा शुद्ध, मारू वार महला पंजवा, दखणे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तू चौ सज्जन मैंडिया, देई से उतार, नैण मिंजे तरस दे, कद पसी दीदार महला पंजवा, नीहो मिंजा तऊ नाल, ब्या नेह कुड़ावे देख, कप्पड़ भोग डरावणे, जिचर प्री ना देख महला पंजवा, उठी झालू कंतड़े, हो पसी तौ दीदार, काजल हार तमोल रस, बिन पसे हब रस चार पौड़ी।
तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तू थाट सिरज संसारिया हर आग्या हुए वेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नवखंड पृथ्वी साज हर रंग सुवारिया व्यक्ति जंत उपाई अंतर कल तारिया हीरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जाने है सब बेदे आप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तो मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रूग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू ना एक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपन कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगै त्रिण जिस होवह आप दयाल तिस लावह सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछे कोई महला पंजवा हबे टोल सहावणे सहु बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार किती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत देखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावही जिस होवह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवै तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जामु पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाऊ लम्मे सेवै दर खड़ा प्रिये तू जान महिंजा साऊ जो ही साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वरतंता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रिचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यों आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिए कुरिए वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे छिकड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे
ਨਾਨਕ ਅਤ ਸੜੀ ਮੰਜ ਨੈਣੂ ਬਿਆ ਢਲ ਪੱਬਣ ਜਿਉ ਜੰਮਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੋਰੇ ਭੋਰੇ ਰੂਹੜੇ ਸੇ ਵੇਂਦੇ ਆਲਕ ਮੁੱਦਤ ਪਈ ਚਰਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਢੂ ਆਵੈ ਰੁੱਤ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤ ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਣ ਹੈ ਦੂਰ ਤੂੰ ਵਰਤ ਹੈ ਜਾਹਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗ ਹੈ ਆਪ ਤੁਧ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਹਰਾ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਅਨੰਦੀ ਅਨੰਤ ਸਭ ਜੋਤ ਸਮਾਹਰਾ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇਵਾ ਮਹਿਦੇਵ ਪਦਾਤੇ ਨਰਹਰਾ ਕਿਆ ਅਰਾਧੇ ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਅਪਰਪਰਾ ਜਿਸ ਮੇਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਕੁਲ ਤਰਾ ਸੇਵਕ ਸਭ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਦਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੇਰਾ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਹਿਡਰੜਾ ਤ੍ਰਿਣ ਛਾਇਆ ਗਾਫਲ ਜਲੇ ਉਹ ਭਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮਥਾਹੜੈ ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਪੀਠਾ ਪੱਕਾ ਸਾਜਿਆ ਧਰਿਆ ਆਣ ਮੌਜੂਦ ਬਾਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਝਾਕ ਦਰੂਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਭੁਸਰੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥਾਲੈ ਮਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰਜ ਰਜ ਸੇਈ ਖਾਹੇ ਪੌੜੀ ਤੁਧ ਜਗ ਮਹਿ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਵਿਚ ਹਉ ਮੈਂ ਪਾਈਆ ਏਕ ਮੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਹੈ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਸ ਨਾਰੀ ਇਕ ਪੁਰਖ ਕਰ ਦਸੇ ਸਾਧ ਲੁਭਾਈਆਂ ਏਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ ਨਿਤ ਫਿਰਹਿ ਪਰਮਾਈਆ ਹਾਠਾ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੀਓ ਸਿਵ ਸਖਤ ਵਰਤਾਈਆ ਸਿਵ ਅੱਗੇ ਸਖਤੀ ਹਾਰਿਆ ਕੇਵੈ ਹਰ ਭਾਈਆ ਇਕ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤੁਧ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਮਲਾਈਆ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਬਿੰਬ ਉਠਾਲਿਓ ਜਲ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈਆ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੁਹਡੜਾ ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਦਾ ਚਾਈਆ ਹੱਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ ਹੱਬੇ ਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹੀ ਨਾ ਠਾਹੇ ਚਿੱਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ

सुदमार निवाड़ा गुर पौ जले पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमति सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा सब इंद्रिया वस कर दितियो सतवंता साड़ा जित लायन पितै लग दिया नह खिंचो ताड़ा जो इच्छी सो फल पाएंदा गुरे अंदर वाड़ा गुरु नानक तुठा पाई रहो हर वसदा नेड़ा दखने महला पंजवा जा मूह आवह चित तू ता हब्बे सुख लहाओ नानक मन ही मंज रंगावला प्री तिहिं जा नाओ महला पंजवा कप्पड़ भोग वकार ए हब्बे ही शार खाक लड़ेंदा तन के जो रत्ते दीदार महला पंजवा क्या तक है व्यापास कर ही अड़े एक आधार थियो संतन की रेण जित लब्बी सुख दातार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाईए बिन सतगुर मनुआ ना लगे धर्म तीरा कल अंदरे एह पापी मूल ना तगे एह कर करे सो एह कर पाए एक घड़ी मोहत ना लगे चारे युग मैं सोदिया बिन संगत अहंकार ना भगे हौ मैं मूल ना छुटई बिन साधु सत संगे टिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन भंगे जिन जन गुरमुख सेविया तिस घर दी बाण अपगै हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगै दखणे महला पंजवा लोड़ींदो हब जाए सो मीरा मेरा नसिर हठ मंझाऊ सो धनी चौंदो मुख अलाय महला पंजवा माणकू मोहे माऊ दिन्ना तनी अपाए ह्याओ मिंजा ठंडड़ा मुख हो सच अलाय महला पंजवा।

पौड़ी मन नु चै हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया मैं लख विड़ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड़ ना साइया मैं दस्यो हो मार्ग संत हो क्यों प्रभु मिलाइया मन अर्प्य हो हौ मैं तजो हो इत पंत जलाइया नित सेवे हो साहेब अपना सतसंग मलाइया सबे आसा पूरिया गुरमहल बुलाइया तुद जेवड़ होर ना सुजई मेरे मित्र गुसाइया दखणे महला पंजवा मूथिया तख्त प्री महिंजे पातशाह पाव मलावे कोल कमल जिवै बिगसाम दो महला पंजवा प्रिया संदड़ी भुख मूलावण थी वितरा जान मठाई इख बे पीड़े ना हुटे महला पंजवा ठगा नीहो मतरोड़ जान गंधर्बा नगरी सुख कटाऊ डुए इस पंधाणु घर कणी पौड़ी अकल कला नह पाई है प्रभ अलख अलेख खट दर्शन भ्रमते फिरह नह मिलिय भेख वर्त करह चंद्रायणा से कितै ना लेख वेद पढ़ह संपूर्णा तत सार ना पेख तिलक कढ़ह इशनान कर अंतर का लेख भेखी प्रभु ना लभई बिन सच्ची सिख भूला मार्ग सो पवै जिस तुर मस्तक लेख इन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देख दखणे महला पंजवा सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थिया कार कूड़ा भी छड संभल सच धनी महला पंजवा हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरै निकामी मन रता कटंब स्यों नित गर्भ फिरामी फिरह गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चलदिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचरदे फिरह संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी दखणे महला पंजवा मुखो अलाए हब मरण पछाण दो कोई नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना हिक सियो महला पंजवा जान वसंदो मांझ पछाणु को हिकड़ो तैं तन पड़दा नाही नानक जय गुर भेटिया महला पंजवा मतड़ी कांडक आह पाव तवंदो पीवसा मूह तन प्रेम अथाह पसन कु सच्चा धनी पौड़ी निरपो नाम वसारिया नाल माया रचा आवै जाए पवाई है बहु जोनी नचा बचन करे तै खिसक जाए बोले सब कच्चा अंदरो थोथा कूड़ियार कूड़ी सब खचा वैर करे निरवैर नाल झूठे लालचा मारिया सच्चै पातशाह वेख तुर कर मचा जम दूती है हेरिया दुख ही मह पचा हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा दखणे महला पंजवा परभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ते आए जन्म मरण मले उतरै सच्चे के गुण गाए महला पंजवा देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूनिया नानक सफल जनम जय कट बुट्ठा सच तनी महला पंजवा लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखणिया बयान जिन्नी दसंदो मापिरी पौड़ी जिन जन गुरमुख सेवया
तिन सब सुख पाई ओह आप तरिया कटंब सियो सब जगत तराई ओ न हर नामा धन संचया सब तिखा बुझाई ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई ओन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुपहाई होआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई पूर्व लिखिया पाया हर सिंह बन आई दखणे महला पंजवा सच सुहावा कांडी है कूड़ै कूड़ी सोए नानक विरले जानी है जिन सच पल्लै होए महला पंजवा सज्जन मुख अनूप अठे पैर निहाल सां सुतड़ी सो सहो डिठ तैं सुपने हौ खन्नीए महला पंजवा सज्जन सच परख मुख अलावण थोथरा मन मजाहू लख तुदहो दूर ना सो पिरी पावड़ी तरत आकाश पताल है चंद सूर बिनासी बादशाह सहा उमराव खान ताहे डेरे जासी रंग तुंग गरीब मस्त सब लोक सदासी काजी सेक मसाए का सबे उठ जासी पीर पै कांबर औलिए को थिर ना रहासी रोजा बांग नवाज कतेब बिन बुझे सब जासी लख चौरासी मेदनी सब आवे जासी निश्चल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अवनासी दखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल हिक सबाज ना कोई आओ सज्जन तू मुख लग मेरा तन मन ठंडा होए महला पंजवा आशक आसा बारा मूह मन वड्डी आस आस निराशा हिक तू हौ बल बल बल गई आस महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख बिन जिथे मरे ओद बाज प्यारे अपने बिरही ना तिरोद पौड़ी तट तीरथ देव देवालिया केदार मथुरा कांसी कोट ते तीसा देवते सन इंद्र जासी सिमरत शास्त्र वेद चार खट दर्श समासी पोथी पंडित गीत कवित कवते पी जासी जति सती सन्यासिया सब काल वासी मुन जोगी दिगंबरा जमै सन जासी जो दीसै सो बिनसना सब बिनस बनासी फिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी सलोक दखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग भुखे लख ना भुखिया दुखे कोड़ ना दुख नानक प्री पिखंदो शुभ दिष्ट महला पंजवा सुख समूहा भोग भूम सबाई को तनी नानक हब्बो रोग मृतक नाम विहूणिया महला पंजवा हिक सकून तू आहे पाषाणु पी हिक कर नानक आसड़ी निबाहे मनुख परथाई लजीवंदो पौड़ी निश्चल एक नारायण हर अगम अगादा निश्चल नाम नान है जिस सिमरत हर लादा निश्चल कीर्तन गुण गोबिंद गुरमुख गावादा सच धर्म तप निश्चलो दिन रहन अरादा दया धर्म तप निश्चलो जिस कर्म लखादा निश्चल मस्तक लेख लिखिया सो टलै ना टलादा निश्चल संगत साध जन बचन निश्चल गुरसादा जिनको पूर्व लिखिया तिन सदा सदा आराधा सलोक दखणे महला पंजवा जोड़ बंदे आप सो तराए किनखे तारेंदड़ो पी तार नानक पिर सिओ रत्या महला पंजवा जिथै कोई कथन नाउ सुनंदो मां पिरी मूं जलाऊं तत नानक प्री पसंदो।

फल कंदरा पाताला आकाश पूर्ण हब कटा नानक पेख जियो इकत सूत परोतिया पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खलाएंदा नहीं कर दयालक औगण को ना चितारदा गल सीती लायक मुह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौंपे उन इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक सलोक डखने महला पंजवा नानक कच्चड़िया स्यो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या ओए जीवंदे विछड़ ओए मुया ना जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अतकालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम फिरी सुहंदियां महला पंजवा जल फल नीर भरे शीतल पवन चलार दे सीजनियां सोएन हीरे लाल जड़ंदियां सुपार कपड़ भोग नानक पिरे विहूणी तत्तियां पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ तावह प्राणियां पावह तुर लहना बिन कर्मा किशु ना लभई जे फिर है सब धरना गुरमिल पौ गोविंद का भय डर दूर करना भय ते बैराग उपजै हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म ना मरना हे आए कमाए त्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस भौजल तरना सलोक महला पंजवा पहला।

या कहां गुफा महबास मन जीते जग जीतिया जाते बिखिया ते हुए उदास अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माए बिडान ज्ञान अंजन जेह पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतरगत हर भेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए रिद सिद जा को खुरी।

ते पाया राम ते भवह न बारे बार रहाउ। झूठा जग डहकै घना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जेह जन पिया तेह बहुर न भई प्यास। गुर प्रसाद जेह बूझिया आसा ते भया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन भया भ्रम गया समुद्र पार। उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समा वहंगी। सुन है सुन मिलिया समंदर सी पवन रूप होए जा वहंगी। बहुर हम काहे आ वहंगी आवन जाना हुक्म तिसै का। हुक्म बुझ समा वहंगी रहाउ। जब चूकै पंच धात की रचना ऐसे भ्रम चका वहंगी। दर्शन छोड़ भये समंदर सी एको नाम त्या वहंगे। जित हम लाए तित ही लागे कैसे कर्म कमा वहंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तौ गुर के शब्द समा वहंगे। जीवत मरहु मरहु पुन जीव हो पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहया लिव सोई। जो तुम मोह को दूर करत हो तौ तुम मुक्त बतावहु। एक अनेक होए रहियो सगल में है अब कैसे परमावहु। राम मोह को तार कहाँ ले जई है सुदो मुक्त कहाँ देओ कैसी। कर प्रसाद मोहे पाई है रहाव। तारन तरन तबे लग कही है जब लग तत न जानिया। अब तो बिमल भये घट ही मह कह कबीर मन मानिया। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन। काहे कीजत है मन पावन जब जम आए केस ते पकरे। तह हर को नाम छडावन रहाउ। काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन। कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन। देही गावा जियो तर महतो बसह पंच किरसाना। नैनू नकटू सर्वनू रसपत इंद्री कहया ना माना। बाबा अब ना बसो ए गांव करी करी का लेखा मांगे। कायत के तू नाव रहाओ तर्म राय जब लेखा मांगे। बाकी निकसी भारी पंच किरसानवा भाग गए। लह बांधे हो जी हो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संत हो खेत ही करो निबेरा। अब की बार बख्श बंदे को।

कहो कबीर एक बेनती बराजी अड़े मोको भौजल पार उतारवना हम्बे राजन कौन तमारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखियो ओहो गरीब मोहे पावे रहाओ हस्ती देख भरम ते भूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रहन बेहानी कबीर को ठाकुर आनंद बनोदी जात ना काहू की मानी श्लोक कबीर गगन दमामा बाजियो परियो निशान कहाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पह

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया अबाल बाल तोड़िया अचल चल थपिया अकड़ घड़िया तहां अपियो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम सिंह।

राग मारु बाणी रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा माते शतर तरै रहाओ। जाति छोत जगत को लागे ता पर तू ही तरै। नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सद

सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धीन बस जा कीरी चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध नव निध कर तल कै हर हर हरना जपस रसना अवर सब छाड बचन रचना रहाव नाना ख्यान प्राण वेद बिद चौतीस अक्षर माही व्यास बी चार कहो परमार्थ राम नाम सर नाही सहज समाध अपाद रहत हुए बड़े भाग लिव लागी कह रविदास उदास दास मत जन्म मरन पै भागी।

नैन अंधले तन भस्म से नानक दुखिया जोग चारी बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

चूकी अभमानी राम अन दिन भोर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक भोर भया मन मानिया।

होई प्रगट हुई चूके सोग संताप ज्योति अंदर ज्योत समाणी आप पछाता आपै पेयड़ घर शब्द पतीनी सहुरड़ पिर पानी नानक सतगुर मेल मलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला पुलावड़ भुली पुल पुल पछो ताणी फिर छोड़ी अड़ी सुती फिर की सार ना जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुत्ती तिस तन विदन राती काम क्रोध अहंकार विगुती हों मैं लगी ताती उडर हंस चलिया फुरमाया असमै पसम समाणी नानक सच्चे नाम विहूनी भुल भुल पछो ताणी सुन नाह प्यारी एक बेनंती मेरी तू निज कर वस्याड़ा हौ रुल भसमै ढेरी बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजै अमृत नाम रसन रस रसना।

घर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिले विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अन दिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी।

लाल रंगी ले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया हवर ना दूजा पाले गुर अलख लखाया जा तिस पाया जा प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बदाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहिया गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव है चढ़ सुआया अपरंपर आपे थाप उथापे जिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया।

गुण गाए राम रसाए रसिय है, गुर ज्ञान अंजन सारे, त्रैलोक दीपक शब्द चानन, पंच दूत संघारे।

सुरत लंगावे, मिल साध संगत करह रलिया, फिर ना पछोतावे, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, नानक पयम पै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिन जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हों सतगुर विकटो हो।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए,

अनेक जन्म पाप कर भरमी हुण तौ शरणागत आई दया करो रख ले वो हर जियो हम लाग हैं सतगुर पाए गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम ज्योति ज्योत मलाई काया गढ़ सोहया राम काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास ग्रास बसारी है अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हौ सतगुर कै बलिहारी है सतगुर आगे सीस भेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रभ दाती नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा जो तुम प्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा बिखम पौ तिन तरिया सुहिला जिन हर हर नाम त्याया गुरवाक सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मलाया ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी हर कृपा कर धरनी धरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया तू अलख अपेओ अगम गुर सतगुर बचन लहया धन धन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे जा बह गुरमुख हर नाम बोल है जा खड़े गुरमुख हर हर कहया तुम स्वामी अगम अथाह तू घट घट पूर रहया सेवक जन सेव है ते प्रवान जिन सेवया गुरमत हरे तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे तिनके पाप दुख सब बिन से जिन मन चित एक अराध्या तिनका जन्म सफलियो सब किया करते जिन गुरबचनी सच भाखिया ते धन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे सेवक जन सेवह ते परवान जिन सेवया गुरमत हरे तू अंतर जामी हरियाप ज्यो तू चलावह प्यारे हो तिवै चला हमरे हाथ किश नाही जा तू मेलह ता हो आए मिला जिनको तू हर मेलह स्वामी सब तिनका लेखा छुटक गया तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई जो गुरबचनी हर मेल लया नानक दयाल हो आतनी ऊपर जिन गुर का पाणा मन्या भला तू अंतर जामी हर आप ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवें चलना तुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख मात जिनको तुर हर लिखिया स्वामी तिन हर हर नाम अराध्या तिनके पाप एक निमख सब लाथे जिन गुरबचनी हर जापया तन तन ते जन जिन हर नाम जपया तिन देखे हो भया सनाथ तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ तू जल थल महियल भरपूर सब ऊपर साच धनी जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी जिन जपया हर ते मुक्त पराणी तिनके उजल मुख हर द्वार ओए हलत पलत जन भये सोहेले हर राख लिये रखण हार हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी तू जल तल महियल भरपूर सब ऊपर साच धनी तू थान थरंतर हर एको एक रविया वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया सब चवह हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे सो धन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते पावे सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सद चवया तू थान तनंतर हर एक हर एको एक रवया।
तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिक है हर गुण हृदय टिक है तिस कह जिस अंतर भव भावनी होई बिन भय किने ना प्रेम पाया बिन भय पार ना उतरिया कोई भव भावो प्रीत नानक किसह लागे जिस तू अपनी कृपा करहे तेरी भगत भंडार असंख जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है तुखारी महला चौथा नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श भया दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे हर पाया प्रभ अविनासी हर आप करते पुरब किया सतगुरु कुल खेत नावण गया नावण पुरब अपीच गुर सतगुर दर्श पया मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा अनदिन भगत बनी खिन खिन निमुख विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सतगुर गुरु किया तिन आप हर मेलाया तीर्थ उदम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ खबर भई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नास गुआया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया जगाती मिले दे भेट गुर पिछे लंघाए दिया सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम त्याया गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जगाती नेड़ ना आया सब गुरु गुरु जगत बोले गुर कै नाए लय सब छुटक गया दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत पया सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लया आड़ दाम किस पया ना बोलक जगातिया मोहन मुंदन पई भाई हम करहें क्या किस पास मांग है सब

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिले आए नगर महाजना गुर सतगुरु ओट गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाऊ थेहो गुआया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही तुखारी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यो जल मीना लागा रंग मरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर।

सुन प्रभ मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनी जै तेरा, कृपा करह ता पीवा, आस प्यासी पिरकै ताई, ज्यों

चिता प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जां को कृपा करी जगदीश्वर किन साध संग मन जिता कहो नानक जीअड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा ढाक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बिधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास तां कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपुरा मिले लखावी रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी रे हर हर नाम अमो

इन बेद मेरा हर प्रभ लहोरे रहाउ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान भिखै रस इन संगत ते तू रहोरे मिल सत संगत की जय हर गोष्ट साधु स्यो गोष्ट हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन हर राम नाम राम रमहो रे अंतर का अभिमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

माई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर।

दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंधन करना पति भाव हरन हर हर हर हर।

कहती साध संग मन लाभ हो ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुर बचनी अपना दर्श दिखाव हो सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजाव हो अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पाव हो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ धन जोबन संपै सुख भोगवै संग ना

कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो हुए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चालस साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी आनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम नदान गाओ गुण गोबिंद उदर सागर के खात सरल समराथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन तूर जन बाछत मिले।

व्यापै संत संग व्यवहार रहाउ कर अनुग्रह आप राखियु नह उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक।

जीवन रूप बसार जीव है, तेहे कत जीवन होत रहाउ। खात पीत अनेक बिंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से

आउ पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने घालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुस भागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावै दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतहु ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावै ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ मैं नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरध बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

मूर्त भगवाना तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विपरजत हर पद चीनै सोई रहाओ राजगुण तम गुण सतगुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया तीर्थ वर्त नेम सुच संयम सदा रह निहकामा तृष्णा यर माया भ्रम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा निरपो पूर रहे भ्रम भागा कह कबीर जन दासा किन्ही बन जिया कांसी तांबा।

चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाव साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए भंडारी आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी आपे दह दिस आप चलावे निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण भर डारी कहत कबीर सुनो रे संतो निभही खेप हमारी री कलवार ग्वार मूड मत उल्टो पवन फरावो मन मतवार मेर सर पाठी अमृत धार चुआवो बोलो भैया राम की दोहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझ हर रस पावे पाई जेते घट अमृत सब ही मह पावे तिसह प्याई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटे दसवां दर खूले ता मन खीवा पाई

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावै सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह।

खान भाऊ भगत सिंह काज ना कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाव लालच झूठ बिकार महामद एह बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आए लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लै जाए रहाव देहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमरहो जन

मन समझै है गुण गाई, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिब भरपुर लीना, सात शब्द निस्तार।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म पयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरों महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

गेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके, संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके, अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए, जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए, अन को दर कर कबहू ना जानस, एको दर सचियारा।

साच रते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

ते जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निपल मर भ्रम ना रहाउ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी। राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे। जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया। राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत कै बांधे भीख भया। जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया। राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ ते चल है बहुत बेकारा। रहाउ चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई। माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुमारा। पंच तत् मिल देही का अकारा घट वध को करे बीचारा। कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई। भैरो महला तीजा जोगी गिरही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोई जागत रह ना मूसे कोई। रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे। सो जागे जो तत बीचार है आप मरे अवरा नह मारे। सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत।

आप उदरे सब कुल उदाहरण हार बिन नावे मन मुख जम पुर जाहे औखे हो वह चोटा खाहे आपे करता देवे सोए नानक नाम प्राप्त होए भैरू महला तीजा गोविंद प्रीत सनकादिक उधारे राम नाम शब्द बीचारे हर जियो अपनी कृपा धार गुरमुख नामे लगे प्यार रहाउ अंतर प्रीत भगत साची होए पूरे गुर मेलावा होए निज कर वसै सहज सुपाई

तीजा कल युग में है राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार। राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसे मन आई रहाउ। राम नाम जन पालह सोए, पूरे गुर ते प्राप्त होए। हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरो महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ। तन मन खोज करे मह पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया त्यों लोए। कल युग में हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदय राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई। मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई। हौ मैं रोगी जगत उपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा। सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई।

मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज घर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निश्चल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरों महला तीजा दुख विच जम्मे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी। हर का नाम ना पाया रहाउ गुर का शब्द सब रोग गवाए। जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिले वडियाई। जिसनो मन वसाए सतगुर भेटे तां फल पाए। सच करनी सुख सार से जन निर्मल जो हर लागे। हर नामे तरह प्यार तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई। जिन सतगुरु पूरा त्याया नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई है। जिन्नी राम नाम चित लाया भैरो महला तीजा। शब्द बीचारे सो जन साचा जिनकै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाईए। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किदू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बाहले भेख पवह दिन राती हमे रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजह बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पत पाई। भैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परियै कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए।

आप। हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ, जह जह देखा तह हर प्रभ सोई, सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई, जिस कौ तुम हर राखिया पावे तिसकै नेड़ कोई ना जावे, तू जल थल महियल सब तै भरपूर, जन नानक हर जप हाजरा हजूर, भैरू महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर का संत हर की हर मूरत, जिस हिरदय हर नाम मरार, मस्तक भाग होऐ जिस लिखिया, सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार, मधसूदन जपिया उरतार, देही नगर तस्कर पंच धातु, गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ, जिनका हर सेती मन मानिया, तिन कारज हर आप सवार, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर अंगीकार किया करतार, मता मसूरत तां किश कीजै, जे किश होवै हर बाहर, जो किश करे सोई भल होसी, हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार, हर जो किश करे सो आपे आपे, ओह पूछ ना किसै करे बीचार, नानक सो प्रव सदा त्याई, जिन मेलिया सतगुर कृपा धार, भैरू महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्स देख मन बिगसै, खिन खिन तिनको हों बलिहारी, हर हिरदय जप नाम मरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनेहारी रहाओ, तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम, जिन हिरदय वसिया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुर साधना पाया, ते हर दरगाह काढे मारी, ते नर निंदक शोभ ना पावह, तिन नक काटे सिरजनहारी, हर आप बलावे आपे बोले, हर आप निरंजन निरंकार निराहारी, हर जिस तू मिलह सो तुद मिलसी, जन नानक क्या एह जंत विचारी, भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीरत हर सुनने, जिन हर नाम सुनिया मन पीना, तिन हम श्रेवह नित चरने, जग जीवन हर त्याए तरने, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाई जेवायत गनने रहाउ, गुरसिख हर बोलो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर केरा, सो जन पावे हर सुख घने, धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता, जिन जन जने, जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर, से साची दरगाह हर जन बने, हर हर अगम नाम हर तेरे, विच भगता हर धरनी, नानक जन पाया मत गुरमत, जप हर हर पार पवनी।

नारायण मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाउ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द बजे दरबारे कर कृपा प्रभ लिए मलाए नानक प्रभ शरणागत आए पैरो महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाथ गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै।

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरू महला पंजवा, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी ते राखे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाउ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरू महला पंजवा, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है तित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञान, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीरथ नहीं पाया मिटिया आप पए सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

रस मंगल गुण गाय रहाउ जोग भेख सन्यासै पेख्यो जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सर मुन मह पेख्यो नट नाटक निरताई चहो मह पेख्यो खट मह पेख्यो दस अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरू महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया।

परग्रह जाय दरबिह रह मिथ्या कर खाय पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोहि मूठा है मूड अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम पुलाय जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

जिन सेविया निरपहो सुखदाता, तिन पहो दूर किया एक प्राता, जो तू करह सोई फुन होए, मारे ना राखे दूजा कोए, क्या तू सोचे है मानस बाण, अंतर जामी पुरख सुजान, एक टेक एको आधार, सब किस जान है सिरजनहार, जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोए, पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुवे बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहे आसमाए, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नाम है प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तव कड़िया जे दूजा करता, तव कड़िया जे अन्याय को मरता, तव कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा परपूर समाही, तव कड़िया जे किस होए तिंगाने, तव कड़िया जे पूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यो पावे त्यों करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहे आसमाए, राखो पैज नानक सरनाए, पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजै रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता।

कहा कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हौ त्याग कहा को त्यागी, बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना सद सद ही चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

ना देष्ट रोग पच मोए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मटाया। भैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख।

हे अन्ते अपूछे राज हमारा सद ही निश्चल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जोगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूत एक रंग लीने भैरो महला पंजवां निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाऊ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया तिस भाणा सूके काष्ट हरिया तिस भाणा ता थल सिर सरिया तिस भाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन सीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर भये दयाला नानक दास देख भये निहाला भैरो महला पंजवां सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कह हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद भैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठसठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेसिया तत् ज्ञान रहाव नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना नाम लैत

दरगाह सुख पावे। नाम लैत प्रभ कहे साबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कहियो इहो सार, हर कीरत मन नाम आधार। नानक उदरे नाम पुनः चार, अवर कर्म लोकह पतियार। भैरु महला पंजवा, नमस्कार ताको लख बार। इहो मन दीजै ताको वार, सिमरन ताकै मिटह संताप। होए आनंद न व्यापह ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम, रहाउ जाकी दृष्ट दुख डेरा तह। अमृत नाम शीतल मन गह, अनक भगत जाके चरण पुजारी। सगल मनोरथ पूरन हारी, खिन मै ऊणे सुपर भरिया। खिन मै सूके कीने हरिया।

मोहे दुहागने आप सिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे की नो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा साह, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रूवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै।

अणहुंडा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निस्तर जो पूजै पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरों महला पंजवा नाम हमारा वेद अरनाद।

हमारा तृप्त सुभोग नाम हमारा सगल अचार नाम हमारा निर्मल व्यवहार जाके मन वसिया प्रभ एक सगल जना की हर हर टेक मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देव नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहि निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगती लावो, नमाणे को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पौ नसै, जाने अपने कै हर मन बसै।

नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

रहाव। संत मंडल में है जन्म मरण रहे, संत मंडल में है जम किशु ना कहे, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में है नाम वखाणी, संत मंडल का निह चले आसन, संत मंडल में है पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में है हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राखै आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होए, निकट न आवे ता कै जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आपह मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाऊ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, एहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ, अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

ज्यों पावै त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवा। गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जपियो हर का नाओ। बिसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा। कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए। रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे। गुर पेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

रहाउ। तीरथ नहाए कहां सोच सैल, मन को व्यापै हो मैं मैल। कोट कर्म बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल। बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतर है दुख। काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया। तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ। तन हर भगत तन करण हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार। भैरो महला पंजवा, गुरसो परसन होए पौ गए। नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल। बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने। साध संग मिटे पै भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाउ। चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महापरेत। आठ पहर हर हर जप जाप, राख नहार गोविंद गुरे आप। अपने सेवक को सदा प्रित पारे, भगत जना के सास निहारे। मानस की कहो के तक बात, जम ते राख दे कर हाथ।

नानक पाया नाम निदान पैरों महला पंजवा करन कारण समरथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै भंजन अविनाशी राय दर्शन देखे है सब दुख जाए जत कत देखो तेरी सरना बल बल जाई।

पूरन मन पाणी जल थल मही अल रवे आसोई नानक सब किश प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

जन धन भैरू महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भये बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखे हाथ, निमख न छोड़े सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायन, किसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन एहो परखारथ, प्रभु हमारा सारे।

अनहद बाणी शब्द सुनाया, मनमुख फूले गुरमुख बुझाया, कारण करता कर दायाया, गुर का शब्द मेरे अंतर ध्यान, हम कबहू न छोड़ो हर का नाम रहाव। पिता प्रहलाद पढ़न पठाया, लै पाती पांदे कह आया, नाम बिना न पढ़ो अचार, मेरी पटिया लिख दे हो गोबिंद मरार। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए, परवित ना पढ़ो रही समझाए,

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभे दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिने आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़े आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरा

आई। कहां तुम्हारा जगदी सुख साई, जग जीवन दाता अंत सखाई, जह देखा तरह आसमाई, थम अपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैत मार पचाया, भगता मन आनंद बजी वधाई, अपने सेवक कौ दे वडियाई, जम्मन मरना मोह उपाया, आवण जाना करतै लिख पाया, प्रहलाद कै कारज हर आप दिखाया, भगतां का बोलिया गै आया, देव कुली लक्ष्मी कौ करह जयकार, माता नरसिंह का रूप निवार, लक्ष्मी पौ करह ना साकै जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए, सतगुर नाम निधान दिरडाया, राज माल झूठी सब माया, लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हौ मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती

परवाहा। जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा, जिस नाम हृदय तिस वड परवारा, नाम बिना मन मुख गवारा। जिस नाम हृदय तिस निह चले आसन, जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन।

अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाय, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माही, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवरना दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथ है ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया घट अंतर जा।

तीरथ हर साची बहुर बहुर पिस संग मन राची रहाओ अचिंत हमारे भोजन पाओ अचिंत हमारे लीचे नाओ अचिंत हमारे शब्द उदार अचिंत हमारे परे पंडार अचिंत हमारे कार्य पूरे अचिंत हमारे लथे वसूरे अचिंत हमारे बैरी मीता अचिंतो ही इहो मन वस कीता अचिंत प्रभु हम किया दलासा अचिंत हमारी पूर्ण आसा अचिंत हमा को सगल सिद्धांत अचिंत हम को गुर दीनो मंत अचिंत हमारे बिन से बैर अचिंत हमारे मिटे अंधेर अचिंतो ही मन कीर्तन मीठा अचिंतो ही प्रभ घट घट दीठा अचिंत मिट्यो है सगलो परमा अचिंत वस्यो मन सुख बिसरामा अचिंत हमारे अनहत वाजे अचिंत हमारे गोविंद गाजे अचिंत हमारे मन पतियाना निश्चल तनी अचिंत पछाना अचिंतो उपजियो सगल बिबेका अचिंत चरी हाथ हर हर टेका अचिंत प्रभु तुर लिखिया लेख अचिंत मिल्यो प्रभ ठाकुर एक चिंत अचिंता सगली गई प्रभ नानक नानक नानक मई भैरों बाणी भगतां की कबीर जियो घर पहला।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कतह ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो।

भरियो माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खलौना जाना जौ हौ बौरा तौ राम तोरा लोग मर्म कह जाने मोरा रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा राम भगत बिन।

जो निर्तन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर धन

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेहे रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई

हरि आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर।

सेवा जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कमन फल पावे। जे मृतक को बिष्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई। कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार। दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले। जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

राती साकर माखी अधिक संतापी तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खीला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपेर खीसर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

तेरी मिट जाई, तब प्रभ काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिव लाए, सतर साय सलार है जाकी, सवा लाख पैकंबर ताकी, सेख जो कही है कोट अठासी, छप्पन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे,

सदा पिखारी, दियो जवाब हुए बजगारी। दास कबीर तेरी पनाह समाना, पिसत नजीक राख रहमाना। सब

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रघुराया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक कह चोट सजाया।

मन अस फिर करे कह कबीर सो प्राणी तरे कोट सूर जाके परगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट।

रहै, बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथारह पार, कोट कमेर परह पंडार, कोटक लक्ष्मी करै श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिरै, इंद्र कोट जाके सेवा करै, छप्पन कोट जाके

पर हरि ताके निकट बसै नर हरि जो ना पजंते नारायण तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है 32 लखना

मेरो मन पतियाए, नाहीं ता घर को बाप रसाए रहाओ। सोइन कटोरी अमृत भरी, लैना मैं हरिया गै तरी। एक भगत मेरे हृदय बसे, नामे देख नारायण हसे। दूध पियाए भगत घर गया, नामे हर का दर्शन पया। मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करो शिंगार। भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ।

फिरै, भगत जना को देहरा फिरै, भैरों नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसे।

पाचहारी राम कह करताल बुझावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन तरे रहाउ बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी पूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख हर नाखश जिन नखह बिदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहु हम नर हर त्याव है राम अपै।

अहंकार गज हस्ती दीनो चमकार रुदन करे नामे की माए छोड़ राम की ना भजै खुदाए ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी माए पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

दोहे जब मटकी भरी ले बादशाह के आगे तरी बादशाह महल में जाई औकट की घट लागी आई काजी मुल्ला बिनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय नामा कह सुनो बादशाह एहो किस

कोई पारस परसै दुबदा ना हुई रहाओ सो मुन मन की दुबदा खाई बिन द्वारे त्रै लोक समाई मन का सुभाव सब कोई करे करता हुए सुअन पै रह फल कारण फूली बन राई फल लागा तब फूल बुलाई ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तह कर्म है नास कृत कारण दद मत है सयान जीवत मुकत सदा निर्वाण कह रविदास परम बैराग हृदय राम की ना जपस अपाग नाम देव आओ कलंदर केसवा तारे अबदाली भेसवा रहाउ जिन आकाश कुलह सिर कीनी कौसै सपत पयाला चमर कोस का मंदर तेरा एह बिद बने गोपाला छप्पन कोट का

घर पहला चौपदे दो तुके एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद महा महा ममारखी चढ़िया सदा बसंत परफड़ चित संभाल सोए सदा सदा गोबिंद भोलिया हौ मैं सुरत वसार हौ मैं मार विचार मन गुण विच गुण लै सार रहाउ कर्म पेड़ साखा हरी धर्म फुल फल ज्ञान पत परापत शाम घणी चूका मन अभमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख आखण सच नाम पत का धन पूरा हुआ लागा सहज ध्यान महारुति आवना वेखो कर्म कमाए नानक हरे ना सूकहे जे गुरमुख रहे समाए महला पहला बसंत रुत आई ले सरस बसंत माए रंग राते रंग है से तेरे चाए किस पूज चढ़ावो लगो पाए तेरे दासन दासा कहो राए जग जीवन जुगत ना मिले काए रहाउ तेरी मूर्त एका बहुत रूप किस पूज चढ़ावो देओ धूप तेरा अंत ना पाया कहां पाए तेरा दासन

काजी मुल्ला हुवै सेख, जोगी जंगम भगवे पेख, को गिरही कर्मा की संद, बिन बूजे सब खड़ियस बंद, जेते जी लिखी सिरकार, करनी ऊपर होवग सार, हुक्म करह मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार, बसंत महला तीजा, बस्तर उतार दिगंबर होग, जटा धार।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू रख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिकहु मैं ममता पर हराई, सब दुख

तो मति इन बिद पावो प्राणपति रहाउ पीतर अगन बनास्पत मौली सागर पंडै पाया चंद सूरज दुए कर ही पीतर

रखाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हंडोल महला पहला साचा साहो गुरु सुख दाता हर मेले भुख गवाई कर कृपा हर भगत दृढ़ाई अन दिन हर गुण गाई मत भूलै रे मन चेत हरी बिन गुरमुक्त नाही त्रै लोई गुरमुख पाईऐ नाम हरी रहाओ बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ बिन भागा नहीं भगत हरी बिन भागा सतसंग न पाईऐ कर्म मिलै हर नाम हरी घट घट गुप्त अपाए वेखै प्रगट गुरमुख संत जना हर हर करहै सो हर रंग पीने हर जल अमृत नाम मना जिनको तख्त मिलै वडियाई गुरमुख से प्रधान किए पारस भेट भये से पारस नानक हर गुर संग थीए बसंत महला तीजा कर पहला दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद महारुति मह सद बसंत जित हरिया सब

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होए ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार पाई संसार बिरख को दोए पल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाना आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों

लोभ लोभाना राम विसार बहुर पछताना विसरत मलाए गुर सेव रांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे सरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा।

तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वडभागी तारी जन नानक और हरे अमृत तारी बसंत।

पाई, तौ जग जीवन वसै मन आई। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाई, जग जीवन स्यो आप चित लाई। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाई। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आई। गुर कृपा ते सहज सुपाई, भगत करे विचो आप खोए। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचे प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विच

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे

सोए, नाम रता जन प्रगट होए, एक साचा शब्द रहे लिव लाए, से जन साचे साचै पाए, साच त्याइन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, एको करता अवर न कोए, गुर शब्दी में लावा होए, जिन सच सेवया तिन रस पाया, नानक सहजे नाम समाया, बसंत महला तीजा, भगत करह जन देख हजूर, संत जना की पग पंकज तूर, हर सेती सद रह लिव लाई, पूरे सत

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा होए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

होई, बहु अभमान अपनी पत खोई। सेवड भागी जिन शब्द पछाणिया, बाहर जांदा घर मह आणिया। घर मह वस्त अगमे अपारा, गुरमत खोजह शब्द बीचारा। नाम नव निध पाई घर ही माही, सदा रंग राते सच समाए। आप करे किस करण ना जाए।

अल्लाह तीजा गुर शब्दी हर चेत सुपहाय राम नाम रस रह अघाय कोट कुटंतर के पाप जल जाय।

इहो मन मौलिया हर गुण दाता नाम बखाने रहाउ भगवै वेस भ्रम मुक्त ना होए बहु संयम शांत ना पावे कोई गुरमत नाम प्राप्त होए वड भागी।

तीजा बनस्पत मौली चढ़िया बसंत इहु मन मौलिया सतगुरु संग तुम साच त्यावो मुग्ध मना ता सुख पावो मेरे मना रहाउ इत मन मौलिया भया आनंद अमृत फल पा।

हर उस्तत धारु हो रे दे अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध लाइय हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विटो घुम वाइय जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हो हर लाइय जन नानक मन तन आनंद भया है गुरमंत्र दियो हर भाइय बसंत महला पंजवां घर पहला दो।

देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत तृप्त अगाने हर गुण है गाई जन नानक हर हर हर त्याई।

मुन जन सेख ना लह भेव जां की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जाके भगत आनंद मैं जाके भगत।

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु न होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

पाऊ, जिसके धारे तरन आकाश, घट घट जिसका है परगास, जिस सिमरत पतत पनीत होए, अंतकाल फिर ना रोए, सगल धर्म मह उत्तम धर्म, कर्म करतूत कै ऊपर कर्म, जिसको चाह है सुर नर देव, संत सभा की लगो सेव, आद पुरख जिसकी आदान, तिसको मिलिया हर निधान, तिसकी गत मिट कही ना जाए, नानक जन हर हर त्याय, बसंत महला पंजवां, मन तन भीतर लागी प्यास, गुरदयाल पूरी मेरी आस, किल विख काटे साध संग, नाम जप्यो हर नाम रंग, गुर प्रसाद बसंत बना, चरण कमल हृदय उरतारी, सदा सदा हर जस सुना।

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद घट घट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करनहार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो त्या

प्रभ आप रखी, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताई, किरत ओना का मिटस नाही, वे अपना बीजिया आप खाए, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुँच ना सकस कोए, प्रभ दास रखे कर जतने आप।

पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवै बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवै जावै रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म प्राप्त जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रवहु गोविंद रमण योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उदा

सदब संत गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां

कहां पकर पवजल निस्तारियु प्रभ काट मैल निर्मल करे गुरपूरे की सरणी परे आप करह आप करन हारी करके

फूल फूल फूले अहं त्याग त्यागी चरण कमल पागी तुम मिलो हो प्रभ सुभागी हर चेत मन मेरे रहाओ सगन बास कूले एक रहे सूख कठूले बसंत रुत आई पर फूल ता रहे अब कलू आयो रे एक नाम बोवहो अन रूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाई जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाई हर नामै के हो वो जोड़ी गुरमुख बैसो।

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी। उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सतगुर, सुख सहज से ती घर जाते। हर आपे खेल आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेल, सो जिन बाजी घर आया।

भागी उपजियो निर्मल ज्ञान लोभ मोह एह परस ना साकै गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बनासी मन ते निज सुख माहे समाया जान को होत दयाल कृपा निद।

संग तेरा हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण तां के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

मन घेर बरखस बाणी बुद्ध बदाहेर मातर बूंद ते धर चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर नाम रतो चाहो तुझे ओर नाम दराए चले सो चोर पत खोई बिख

कुवार, नाम भणहु सच दूत सवार, प्रियो सेवहो प्रभ प्रेम आधार, गुर शब्दी बिख त्यास निवार, मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुर कै शब्द पछाना तोहे, नानक ठाडे चाह प्रभु द्वार, तेरे नाम संतोखे कृपा धार, बसंत महला पहला, मन भूलो भरम से आए जाए, अत लुभ लुभानो बिखम माए, नह अस्थर दिसै एक पाए, ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए, मन भूलो समझस साच नाए, गुर शब्द बीचारे सहज पाए, रहाओ मन भूलो परमस पवर तार, बिल बिरथे चाहे बहु बेकार, मैगल ज्यो फासस काम हार, कड़ बंधन बांध

सब दुख सखाई गुण है बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हर रस राते पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, तर धारण देखे जाने आप, आप भलाए।

पार पवे नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नजर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवतियां कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला नील रूप बनवारी घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी जे तू मीर महीपत साहेब कुदरत कौन हमारी चारे कुंत सलाम करेंगे घर घर सिफत तुम्हारी तीरत सिमरत पुन दान किश लाहा मिले दिहाड़ी नानक नाम मिले वडियाई मेका घड़ी संभाली बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया नगर एक बालक वसिया हिन पल फिर ना रहाई अनक अपाव जतन कर थाकी बारंबार परमाई मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन सतगुर मिले ता पूरा पाई है पज राम नाम निशान रहाओ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसिया राम नाम गुर उदक चुआया फिर हरिया हो आरसिया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया एक गुरमुख चलत दिखाया बाहर खोज मुए सब साकत हर गुरमति कर पाया दीना दीन दयाल भये हैं ज्यो कृष्ण बिदर घर आया मिले उस दामा पावनी तार सब किसे आगे दालद पन

दंड खीली एक रत्ती तिल ना कटाई जानकी उस्त है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल

जल है समावे बसंत महला पंजवा घर कहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा

कर नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाउ गनका उदरी हर कह तूत गज इंद्र त्यायो हर कियो मूख बिपर सदामे दाल्द पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप बस्तर सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध बेणी कौ गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास।

भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोए। एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग, रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज, धूम बादर सब माया साज। पाप करम तब

राम क्रोध मन वास किया, सुपने नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई है एह रुत सुहाई वन त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजै लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ ना ताई पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दयो खुड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिसते उपजिया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माहि समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

संग ही चोर कर मुसन लाग रहाउ, जागे सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागे तर लंकूर, शंकर जागे चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुत मकलाई अपनी माओ, रहाओ, पगा बिन हुरिया मारता, बदले बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलो है, बिन अस्थन गहू लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पर्ण साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम, रहाओ संडे मर के कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सताव हो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाई, तुझ राखनहारु मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार, हरनाक्ष शेदे हो नख बेदार, उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव, कह कबीर को लख ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रतन हिर लीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहूं काहे, को ना बेगू तो मैं को आहे, माधो दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए, रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटाधार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाही, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पांच, बरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज, रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करत रार, चलो बनजारा हाथ चार, पूंजी हैरानी बनज टूट, डह दिस टांडो गयो फूट, कह कबीर मन सरसी काज, सहज समानो ता भरम पाज, बसंत हिंडोल कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माता जूठी पिता भी जूठा, जूठे ही फल लागे, आवह जूठे जाहे भी जूठे, जूठे मरह अभागे,

हों तार भी ना जानो मोको बाहां दे बीठला सहज अवल धूड़ मणि गाडी चालती पीछे तिनका लै कर हाकती जैसे पनकत थ्रू टिट हाकती सर धोवन चाली लाडुली रहाउ धोबी धोवै बिरह बराता हर चरण मेरा मन राता पणत नाम देओ राम रहिया अपने भगत पर कर दया बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तुझे सुजनता कछु नाही पहरावा देखे ऊब जाए गर्भ

खूब राज तू तिस ते खरी उतावली रहाऊ। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढे परदेस। आप तन काजो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। उत्तर कलत्र का करे अहंकार ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कहरवदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस कर्म है

साध न फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर धन सोहागै। कुचिलक रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ती दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात वर्ण कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सवारे। जारो ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मोह पसारी। जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी। अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी। नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी। सारंग महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया। आत्म राम रहया भरपूर रहाउ। सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म ज्योत पई परफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर। वड्डे भाग सतसंगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर। अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए धूर। दुर्मत बेकार मलीन मत होशी हिरदा कसुद लागा मोह पूर। बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हौमै व्याप रहया मन चूर। हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग धूर। नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर। सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी। भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी। रहाउ हिरदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी। हर दिन राम नाम जप हिरदय।

सखारी अंतर हर नाम सर्व धरनी तर साकत को दूर भया अहंकारी तृष्णा जलत न कबू बूझ जुह बाजी हारी उठत बैठत हर गुण गावह गुर किंचित कृपा तहारी नानक जिनको नदर पई है।

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कह शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। किस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर

तब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाए मत प्रगास भये हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाए अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाए हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाए अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाए जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाए नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए सारंग महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी मेरा ही अरह सतगुर प्रीत लगाई मन हर हर कथा सुखानी रहाओ दीन दयाल हो वो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी हर कै रंग रते बैरागी जिन गुरमत नाम पछानी पुरख मिलया सुख।

हर हर कहानी पंच जना गुर वस गतियाणी तौ उन मन नाम लगानी जन नानक हर कृपा तहारी हर राम नाम समानी। सारंग महला चौथा जप मन राम नाम पढ़ सार राम नाम बिन थिर नहीं कोई होर निफल सब विस्थार रहाओ। क्या लीजै क्या तजिय बौरे जो दिसै सो शार जिस बिख्या कौ तुम अपनी कर जानो शाद शाद जाहो सिर पार तिल तिल पल पल औद फुन काटै।

लै झूठ छोड़ जाए पासार, नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार। सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यो जगरत पाप रहाओ। जिस धन का तुम गर्भ करत हो, सो धन किसह ना आप। खिन मह छोड़ जाए बिख्या रस, तौ लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जाप हो जाप। अपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तौ जाए संताप। सारंग महला चौथा कर पंजवा, दो पदे पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मन जगन्नाथ जगदीशरो, जग जीवनो मन मोहन स्यों प्रीत लागी। मैं हर हर हर टेक, सब दिन सब रात रहाऊ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत, सुख नारद ब्रह्मादक, तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर बेअंत, तू हर बेअंत, तू हर स्वामी, तू आपे ही जान है अपनी भांत। हर कै निकट निकट, हर निकट ही बसते, ते हर के जन साधु हर पगात, ते हर

गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते। तित ग्रह बाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा, तिन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान गए। तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु। जगदीश जपो मन बचन कर्म हर हर अरादु, हर के जन साधु। हर राम बोल हर राम बोल, सब पाप गवाधु। नित नित जागरण करो, सदा सदा आनंद जप जगदीश्वरा।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे तिस जन के हो मल मल तू आ पाऊं हर जन को हर मिलिया हर श्रद्धा ते मिलिया गुरमुख हर मिलिया मेरा मन तन आनंद भये मैं देखिया हर राऊ जन नानक को कृपा भई हर की कृपा भई जगदीश्वर कृपा भई मैं अनदिनो सद सद सदा हर जपिया हर नाऊ सारंग महला चौथा जप मन निरभउ सत सत सदा सत निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव।

दर्शन कहो कोट कोट ते तीस सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी तिन जन की सेवा थाए पई जिनको कृपाल होवत बनवारी हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले

मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाउ हर का राम अमृत हर हर हरि सो पिए जिस राम प्यासी हर आप दयाल दया कर मेले जिस सतगुरु सो जन हर हर अमृत नाम च खासी जो जन सेव है सद सदा मेरा हर हरि इनका सब दुख भरम पहु जासी जन नानक नाम लए ता जीवे ज्यों चात्रक जल पिए त्रिपतासी सारंग महला चौथा जप मन श्री राम राम रमत राम सत सत राम बोलो पैया सद राम राम राम रव रहया सर्वगे रहाउ राम आपे आप आपे सब करता राम आपे आप आप सबत जगे जिसे आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय सो जन राम नाम लिव लागे राम नाम की उपमा देखो हर संतो हो जो भगत जना की पात राख है बिच कल युगे अगे जन नानक का अंग किया मेरे राम राय दुश्मन दुख गए सब भगे।

अंदर प्यास चात्रक ज्यो जल की सफल दर्शन कद पाऊं रहाओ अनाथा को नाथ सर्व प्रत पालक भगत वच्छल हर नाउ जाको कोई न राखे प्राणी तिस तू देहे असराऊ।

नहीं पाईए, सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यों गोसत, हर साधन स्यों लिवलाओ। जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्स मन चाओ। सारंग महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान। करत बुराई मनुख ते छपाई, साखी भूत पवान रहाओ। वैष्णो नाम करत खट करमा, अंतर लोभ जुठान। संत सभा की निंदा करते, डूबे सब अज्ञान। करह सोम पाक, हिरह पर दर्भ।

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यों कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते सुध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लौ बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब ओह भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जलै मह डारियो, अंबै अंब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

कालर बिरख जिवहां आयो लाभ लाभन कहताई मोहन ठगौरी स्यों उलझ पाहा काच बादर लाल खोई है फिर एहो अवसर कद लहा सगल पराद एक गुण नाही ठाकर छोड़ है दास भजहा आई मस्त जड़वत की न्याई ज्यो तस्कर दरसा नेहा आन अपाओ न को सूजे हर दासा सरणी पर रहा कहो नानक तब ही मन छुटिया जो सगले अवगुण मेट तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रिय बहुत बरागेव अनक पांत अनूप रंग रे तिन स्यो रुचै ना लाग्यो रहाओ निसबासर प्रिय प्रिय मुख तेरो नींद पलक नहीं जाग्यो हार कजर बस्तर अनक श्रृंगार रे बिन

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ डाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार गिरयो जाए रसातल परयो सिती सिती सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके गुआरे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अंध अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत श्रम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परापत।

वेदनाई दर्शन प्यास प्रिय प्रीत मनोहर मन न रह बहु विद उमकाई रहाऊ चितवन चितवो प्रिय प्रीत बैरागी कद पावो हर दरसाई जतन करो एहो मन नहीं धीरे को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिय दर्शन खावे इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाउ अनक जन्म भ्रम तो ही आयु मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैन हो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ता कै हो जाई सारंग महला पंजवा वाह अवसर कै हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाउ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्सी रविदास ठाकुर बने आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाके आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवे तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए आन।

पतित के पातक उत्तर है, हर नामा उर धार है। जो जो सुने राम जस निर्मल, ताका जन्म मरण दुख नासा, कहो नानक पाई है वड भागी।

मान करो अब मान बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरलाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन सलाख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो बिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो कर अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो हार जो परयो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लभ दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंधलै मानक देखा रहाउ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठ्यो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राण पति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यो दृष्ट न करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लोभांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुरु नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम है शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरो धंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसावो हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोग न संगा निरपौ भए नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवा हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवन हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ शूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगड़ सुजानी जेह घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाऊ। बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानत पए लूटा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा। जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा। सारंग महला पंजवां अब मेरो ठाकर स्यों मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यों जल मीना। रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत्सर एह अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना। ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना। सारंग महला पंजवां मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उधार है। रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है। हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है। क्या ए पूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है। राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है।

एते दुख सहामा गोबिंद भजन के निर्भय व्यापारी हर रास नानक राम नामा सारंग महला पंजवा मेरा मन मिष्ट लगे प्रिय बोला गुरबाह पकर प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला रहाओ प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रित पालक मोहे कलकर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं भोला जे तख्त बसाल है तो दास तुम्हारे कास बढ़ाव है के तक बोला जन नानक के प्रभ पुरख बधाते मेरे ठाकुर अगह अतोला सारंग महला पंजवा रसना राम कहत गुण सोहं एक निमख पाए समावे देख चरित मन मोहं रहाव जिस सुनिए मन हुए रहस्यत हृदय मान दुख जोहं सुख पायो दुख दूर परायो बाण आई प्रभ तोहं किल विख गए मन निर्मल होई है गुर काटे माया द्रोहं कहो नानक मैं सो प्रभ पाया करन कारण समर्थो हं सारंग महला पंजवा नैनहु देखियो चलत तमाशा सब हूं दूर सब हूं ते नेर अगम अगम घट

द्वार बना है भक्त वशल गुण तासा अंध कूप में दीपक बलियो गुर हृदय कियो परगासा कहो नानक दर्श पेख सुख पाया सब पूरन होई आसा सारंग महला पंजवा चरण है गोविंद मार्ग सुहावा आन मार्ग जीता किस ताई है ते तो ही दुख हावा रहाओ नेत्र पनीत पये दर्श पेखे हस्त पनीत टहलावा हृदय पनीत हृदय हर बसेउ मस्त पनीत संत तुरावा सर्ब निदान नाम हर हर कै जिस कर्म लिखिया तिन पावा जन नानक कहो गुरु पूरा भेटियो सुख सहजे अनद बिहावा सारंग महला पंजवा त्यायो अंत बार नाम सखा जह मात पिता सुत भाई ना पहुंचे तहां तहां तू रखा रहाओ अंध कूप ग्रह मह तिन सिमरियो जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी सब तू है तू ही दिखा अमृत नाम पिया मन तृप्तिया अघाए रसन चखा कहो नानक सुख सहज मैं पाया गुर लाही सगल तिखा सार महला पंजवा गुर मिले ऐसे प्रभु ते आया पयो कृपाल दयाल दुख भंजन लगे ना ताती बाया रहाओ जेते सास सास हम लेते तेते ही गुण गाया निमख न बिसरे करी न बिसरे सद संगे जत जाया हौ बल बल बल बल चरण कमल कहो बल बल गुर दरसाया कहो नानक काहू परवाहा जो सुख सागर में पाया।

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाउ पार ब्रह्म आजोनी संभव सर्वथान कट बीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा तोह नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरे बसेओ सगल भूख मेरी लाथे रहाओ किरपा निधान।

चतुर अनूप बधाते किस स्यों रुच नहीं राई मोहन स्यों बावर मन मोहयो झूठ ठगौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई सगल निदान करै मह पाए कहो नानक जोत समाई सारंग महला पंजवा वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर तौ मैं साज सिंगरिया रहाओ हम भूले हैं तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उधरिया हम नीच बिरख तुम मैलागर लाज संग

कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराध खिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले थिर नानक राजया सार महला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाय मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमक नहीं रह सकी है, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाईए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह घर, तिस ही सरनी पाईए, किसह त्याग मनुख जे सेव हो, तो लाज लोन होए जाईए, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाईए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताईए, सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जियो मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ, अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे, अमृत नाम औखद मुख दीनो, जाए पया गुर पैरे, कवन उपमा कहो एक मुख, निर्गुण के दा तेरे, काट सिल्क जाओ अपना कीनो, नानक सुख कनेरे, सारी महला पंजवा, प्रभ सिमरत दू

किस पह जासी। ज्यों जान हो त्यों राखो ठाकुर, सब किस तुम ही पासी। हाथ दे राखे प्रभ अपने, सद जीवन अपनासी। कहो नानक मन आनंद भया है, काटी जम की फासी। सारंग महला पंजवा, मेरो मन जत कत तुझे सुमहारे। हम बारक दीन पिता प्रभ मेरे, ज्यों जान है त्यों पारे रहाल। जब भूखो तब भोजन मांगे, अगाए सुख सघारे। तब अरोग जब तुम संग बसतो, छुटकत होए रवारे। कमन बसेरो दास दासन को, थापियो थापन हारे। नाम ना बिसरे तब जीवन पाईए, बिनती नानक एह सारे। सारंग महला पंजवा, मन ते पै पौ दूर परायो। लाल ब्याल गुलाल लाडले, सहज सहज गुण गायो रहाव। गुर बचनात कमात कृपाते, बहुर न कतहुं तायो। रहत उपाद समाद सुख आसन, भगत वच्छल ग्रह पायो। नाद बनोद कोड आनंदा, सहजे सहज सुमायो। करना आप करावने आपे, कहो नानक आप आपायो। सार महला पंजवा, अमृत नाम मनह आधारो। जिन दिया तिस कह कुर्बाने, गुरपूरे नमस्कारो रहाओ। बूझी तृष्णा सहज सुहेला, काम क्रोध बिख जारो। आए ना जाए बसै एह ठाहर, जह आसन निरंकारो। एक प्रगट एक गुप्ता, एक तुंडू कारू। आदमा दे अंत प्रभ सोई, कहो नानक।

ते हरेउ ऊहा ले तरेउ जैसे बासा मास देत चाकली देवनहार बसारेउ अंदले ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली साध बकार बकार झूठ रस

खुली सार महला पंजवा गुरजी हो संग तोहारे जाने हो कोट जोध ओआ की बात ना पूछी है ता दरगाह भी मान्यो रहाओ कमल मूल प्राणी का कही है कमल रूप दृष्टान्यो ज्योत प्रगास पई माटी संग दलाब देव खान्यो तुम ते सेव तुम ते जप तापा तुम ते तत पछान्यो कर मस्तक तर कटी जेवरी नानक दास दसान्यो सारंग महला पंजवा हर हर दियो सेवक को नाम मानस काको बपरू पहाई।

मन तन जियो पिंड सब तुमरा एहो तन सीतो तुमरे तान रहाओ। तुम ही दिए अनक प्रकारा तुम ही दिए मान सदा सदा तुम ही पात राखो अंतर जामी जान। जिन संतन जानिया तू ठाकुर ते आए परवान। जन का संग पाईए वडभागी नानक संतन कै कुर्बान। सारू महला पंजवां करहो गत दयाल संतो मोरी तुम समरथ कारण करना टूटी तुम ही जोरी रहाओ। जन्म जन्म के बिखई तुम तारी समत संग तुम्हारे पाई। अनक जोन भ्रमते प्रभ बिसरत सास सास हर गाई। जो जो संग मिले साधु कै ते ते पतत पनीता। कहो नानक जाके वड भागा तिन जन्म पदार्थ जीता। सारंग महला पंजवा ठाकुर बिनती करन जाने आयो। सर्ब सुख आनंद सहज रस सुनत तुहारो नायो रहाओ। कृपा निधान सुख के सागर जस सब मैं जा को छायो। संत संग रंग तुम किए अपना आप दृष्ट।

रहाउ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराध हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियाणप तुमरे, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पहानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाटो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ो हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जोहो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारी। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत परे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जा।

द्वारी। सारंग मोहल्ला पंजवा। प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा, कमन मूल ते मनुख करिया, एहो परता।

जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन हवाल राख ले हो दास अपने को सदा सदा कृपाल सुख निदान नानक प्रभ मेरा साध संग धन माल सारंग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार प्रेम भगत गुण गावत गीते पोहत नह संसार रहाओ श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी एहो साध को आचार चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार प्रभ दीन दयाल सुनो बेनंती कृपा अपनी तार नाम निदान उच्चरो नित रसना नानक सद बलिहार सारंग महला पंजवा हर के नाम हीन मत थोरी सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर मिलत अंध दुख घोरी रहाओ हर के नाम स्यो प्रीत न लागी अनक भेख बहु जोरी तू तत बार न लागे ताको ज्यो गागर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीजै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी सरनाई प्रभ बिनयान न होरी सारंग महला पंजवा चितवो वा अवसर मन माहे हुए अकत्तर मिलहो संत साजन गुण गोविंद नित गाहे रहाव बिन हर भजन जेते काम करिय है तेते बिरथे जाहे पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाहे जप तप संयम कर्म सुख साधन तुलना कछुए लाहे चरण कमल

काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल भय काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाओ पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई कव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर ना पय बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादि सिर उठाई पोट उगर घन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे झूट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कछ ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गैया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार आखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाओ सांत सुख ना सहज उपजे यह इस व्यवहार आप पर का

पर वार रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुमरी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निध पाही। सारी महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निध तन, बिखै माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रतन जन्म अपार जीतेओ,

मन मोहिहु अचर्जता के स्वाद रहाउ। मात पिता बंदप है सोई मन हर को अहलाद। साध संग गाए गुन गोविंद बिन सेउ सब परमाद। डोरी लपट रही चरन संग ब्रह्म पै सगले खाद। एक आधार नानक जन किया बहुर ना जोन परमाद। सारंग महला पंजवा मायरी माती चरण समूह। एक बिन हो आन ना जानो दुतिया भाऊ सब लू रहाओ। त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खू। दर्स प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तुहू। संत प्रसाद मिलो सुख दाता बिनसी हूं मैं हूँ। राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू। सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार। राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव। ईत ऊत ना डोल कतहू नाम हिरदय तार। गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार। जल थल महियल पूर रहियो सर्बनाथ अपार। हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार। सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो। सिमरत नाही हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे। सफल दे तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सभी ऊपर साध भले। नानक दास धूर जन बांछ उदरह लाग पले। सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी। मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख कब आखी रहाओ। तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी। वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी। जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी। सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी। जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहाव। कितह अस्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी। संता बिन तै कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी। जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी। नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी। सारंग महला पंजवा मायरी काटी जम की फास। हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास। रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास। संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस। महा ध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो। देखत दर्श पाप सब नासे हर नानक रतन लहियो। सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर। दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर। रहाव प्राण मान पत पित सुत बंदप हर सर्बस धन मोर। त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम बिन हर जानत होर। पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्बला जोर। नानक सरण कृपा निध सागर बिन से आन निहोर। सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए। चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ। चितवता गोपाल दर्शन कलमला कडत होए। जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए। परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए। रमण गुण गोपाल करते
नानका सच जोए। सारंग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर बसार जो आन राच है, मिथन सब विस्थार रहाव। साध संगम भज स्वामी, पाप होवत खार, चरनार बिंद बसाए हृदय, बहुर जन्म ना मार। कर अनुग्रह राख लीने, एक नाम आधार, दिन रहन सिमरत सदा नानक, मुख उज्जल दरबार। सारंग महला पंजवा, मानी तू राम कै दर मानी, साध संग मिल हर गुण गाए, बिनसी सब अवमानी रहाओ। तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी, गुरमुख पूर ज्ञानी, सर्ब सुख आनंद कनेरे, ठाकुर दर्श त्यानी, निकट वर्तन सा सदा सुहागन, दह दिस साई जानी। प्रिय रंग रंग रती नारायण, नानक तिस कुर्बानी। सारंग महला पंजवा, त्वा चरण आसरो ईस, तुम्हें पछानू, साख तुम्हें संग।

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जान जा को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाउ खात पीवत हस्त सोवत औद बिती असार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बिकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिकठ गौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर छेवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी बिचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती।

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचिया हर संग संग खचिया जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारे महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार वेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सर्वन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्स नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारे महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुर गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवन सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण शरण परन साधु आन वान बिसारे हर चरण प्रीत नीत नीत पाम नाम महापनीत सेवक पै दूर करन कलमल दुख जारे कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार पूत नानक तत बीचारे सारं महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रहाव प्रीत लाए हर त्याए गुण गोविंद सदा गाए हर जन की रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग भाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवा हर बिन तेरो को ना सहाई का की मात पिता सुत बनता को काहू को भाई रहाओ धन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना।

जगत सब मिथ्या ज्यों सुखना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग महकू रहन ना पावे एक आवह एक जाही रहाओ कां को तन धन संपत कां की का स्यों नेहो लगाई जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नौवा कहां नर अपनो जन्म गवावे माया मद बिखिया रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाओ इह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सख्त रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जिह बिद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

हर रस रत्ते अद कहाई, एक सबिन मैं अवर ना जाना, सतगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया, सुपार भरे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया, गुर प्रसादी अकथ

सूझै पाए मुख द्वारा, जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै। सतगुर बूझ बुझाई, सत संयम करनी किरत कमावै। आवण जान रहाई, से दर साचै साच कमावै। जिन गुरमुख साच आधारा, मन मुख दूजै भरम भुलाए। ना बूझै विचारा, आपे गुरमुख आपे देवै। आपे कर कर वेखै, नानक से जर थाए पए है। जिनकी पत पावै लिखै, सारंग महला पंजवां।

तरन करावन अपाय समावन सगल सत्र पत बीठा रहाउ। राणा राउ राज भय रंका हुन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत ताको सगल घटा जस गायो। उपमा सुनहो राजन की संत हो कहत जेत पहुंचा। बेशमार वद साहदा तारा ऊचे ही ते ऊचा। पमन परोयो सगल अकारा पावक काष्ट संगे। नीर तरन कर राखे एकत कोए ना किसे ही संगे। काट काट कथा राजन की चाले कर कर तुझह उमाहा। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रिजित समाहा। जो किछ करना सो आपे करना मसलत काहू दीनी। अनक जतन कर करह दिखाए साची साखी चीनी। हर भगता कर राखे अपनी दीनी नाम बड़ाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त भए साध संगत कर तिनके अवगन सब पर हरिया। तिनको देख भए कृपाला तिन भव सागर तरिया। हम नाने नीच तुमे बड साहिब कुदरत कौन बीचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे नानक नाम आधारा। सारंग महला पंजवा अष्टपदी घर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचर्ज सभा रहाओ। सदा सदा सतगुर नमस्कार गुर कृपा ते गुण गाए अपार। मन भीतर होवे परगास ज्ञान अंजन अज्ञान बनास। मित नाही जाका विस्थार सोभा ताकी अपर अपार। अनक रंग जाके गने ना जाहे सोग हरख दोहु मैं नाहे। अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करह अनक महेश बैस ध्यान तरह। अनक पुरख अंसा अवतार अनक इंदर उभे दरबार। अनक पवन पावक अरनीर अनक रतन सागर दाद खीर। अनक सूर ससियर नख्यात अनक देवी देवा बहुपात। अनक वसुदा अनक कामतेन अनक पार जात अनक मुखवेन। अनक आकाश अनक पाताल अनक मुखी जपिया गोपाल। अनक शास्त्र सिमरत पुराण अनक जुगत होवत बखियान। अनक सरोते सुनह निदान सर्व जी पूर्ण भगवान। अनक धर्म अनक कुमेर अनक वर्ण अनक कनक सुमेर। अनक सेख नवतन नाम ले पार ब्रह्म का अंत ना ते। अनक पुरिया अनक तह खंड अनक रूप रंग ब्रह्मांड। अनक बना अनक फल मूल आपह सूक्ष्म आपह असथूल। अनक जुगाद दिनस अर रात अनक परलो अनक उत्पात। अनक जी जाके ग्रह माहे रमत राम पूर्ण सर्व ठाए। अनक माया जाकी लखी ना जाए अनक कला खेले हर राय। अनक तुनत ललत संगीत अनक गुपत प्रगटे तहचीत। सब ते ऊच भगत जा कै संग आठ पहर गुण गावह रंग। अनक अनाहद आनंद चुनकार वार रस का काश अंत न पार। सत पुरख सत स्थान ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण। अपना किया जन है आप आपे घट घट रहे हो बेआप। कृपा निदान नानक दयाल जिन जपया नानक ते भय निहाल। सारंग संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब देखिए अनपह का दाता कट कट पूर्ण है अनपाता। कट कट पूर्ण कर विस्थीरन जल तरंग स्यो रचन किया। अब रस माने भोग कटाने आनना बिया कोथिया। हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रभ जाता। नानक दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपह का दाता।
कौन उपमा देवो कमन बढ़ाई, पूर्ण पूर रहो सब ठाई, पूर्ण मन मोहन कट कट सोहन, जब खिंचे तब शाई, क्यों ना अराध हो मिलकर साधु हो, करी मोहतक बेला आई, अर्थ दर्ब सब जो किस दिस है, सांग ना कछु हो जाई, कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हियो अरापो देहो संदेशा प्रभ जीओ कैसा, कह मोहन परवेसा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थान अंतर देसा, बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता, कह ना सको हर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा, कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जेह चरण बसाया, चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुआया, पया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया, दुख नाठा सुख कर मह बूठा, महा आनंद सह जाया।

राय महमे हसने की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला दूजा गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हाथ महला पहला ना पी जय रागी ना दी वेद ना पी जय सुरती ज्ञानी जो ना पी जय सोगी की तैरोज ना पी जय रूपी माली रंग ना पी जय तीत पवे नंग ना पी जय दाती की तै पुन ना पी जय बाहर बैठिया सुन ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर ना पी जय केते होए तूड़ लेखा लिखिए मन कै पाए नानक पी जय साचै नाए महला पहला नव शे खटका करे विचार निस दिन उचरे पार अठार तिन पी अंत न पाया तोहे नाम बिहून मुक्त क्यों होए नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया गुरमुख नानक नाम पछाणिया पौड़ी आपे आप निरंजना जिने आप उपाया आपे खेल रचायोन सब जगत सबाया त्रै गुण आप सिरजियन माया मोह वधाया गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया नानक सच वरतदा सब सच समाया सलोक महला दूजा।

गुरमुख चल तर चाय उन गुण प्रगटी आया। गुरबाणी सद उचरै हर मन वसाया। सकत गई भ्रम कटिया शिव जोत जगाया। जिनकै पूतै पुन है गुरपुरख मलाया। नानक सहजे मिल रहे हर नाम सुमाया। सलोक महला दूजा सा चले बन जा रहा। लिखिया देवै नाल लिखे उपर हुक्म होए लइए वस्त सुमाल। वस्त लई बनजारी वखर बद्दा पाए। के इलाहा लै चले इक चले मूल गवाए। थोड़ा किने ना मंगियो किस कही है साबास। नदर तिन्ना को नानका जे साबत लाए रास। महला पहला जुड़ जुड़ विछड़े विछड़ जुड़े। जीव जीव मोए मोए जीवे। केतियां के बाप केतियां के बेटे। केते गुर के ले हुए आगे पाछे गणत ना आवे। क्या जाति क्या हुण हुए। सब करना किरत कर लिखिए। कर कर करता करे करे। मन मुख मरिए गुरमुख तरिए। नानक नदरी नदर करे पौड़ी। मन मुख दूजा परम है दूजा लोभाया। कूड़ कपट कमावंदे कूड़ो आलाया। पुत्र कलत्र मोह हेत है सब दुख सबाया। जमदर बद्दे मारी है परम है परमाया। मन मुख जन्म गवाया नानक हर पाया। सलोक महला दूजा जिन वडे आई तेरे नाम की। तेरते मन माहे नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाहे। नानक अमृत मने माहे पाइये गुर प्रसाद। तिन्नी पीता रंग सियों जिनको लिखिया आद। महला दूजा कीता क्या सलाही है करे सोए सलाही। नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाही। करता सो सलाही है जिन कीता आकार। दाता सो सलाही है जे सब सह दे आधार। नानक आप सदीव है पूरा जिस भंडार। वड्डा कर सलाही है अंत ना पारावार। पौड़ी हर का नाम निदान है सेवे सुख पाई। नाम निरंजन उच्चरा पत सियो कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है नाम हृदय वसाई। मत पंखे रू वस हुए सतगुरु त्याई। नानक आप दयाल हुए नामे लिव लाई। सलोक महला दूजा किस सियो कैसा बोलना जे आपे जाने जान। चीरी जा की ना फिरै साहिब सो परवान। चीरी जिसकी चलना मीर मलक सालार। जो तिस भावे नानका साई भली कार। जिन्ना चीरी चलना

आख, एक आख आख है, शब्द पाख है, अर्ध उर्ध दिन रात, जे कहो होए ता केहो दिसै, जापै रूप न जात, सब कारण करता करे, काटे ओ काट काट थाप, आखने औखा नानका, आख न जापै आख पौड़ी, नाए सुने मन रहसी है, ना मेशा ते आई, नाए सुने मन तृप्ति है, सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपजे नामे वड्याई, नामे ही सब जात पत, नामे गत पाई, गुरमुख नाम त्याई है, नानक लिवलाई। सलोक महला पहला, झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी, झूठ न अन्नी, झूठ न नाई, झूठ न मिंबर है सब थाई।

मूख की गिरही का सत दान राजे चुड़ी नियाम की पढ़िया सच त्यान पानी चेतना धूपै मुख पीता तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुनिए सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुनिए नौ निध मिले मन चिंदिया पावे नाए सुनिए संतोख होए कबला चरण ते आवे नाए सुनिए सहजी उपजे सहजी सुख पावे गुरमति ना उपाइये नानक गुण गावे सलोक महला पहला दुख विच जम्मन दुख मरन दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करह पुकार दुख किया पन्ना खुलिया सुख ना निकलियो कोए दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिफती रत्या मन तन हरिया होए दुख किया अग्नि मारी है ई दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पास रंग पशु हूं पास खे पशु पास कमावनी पी पास परिया दे जां जियो विचों कढ़िए पशु परिया जाए अग्गे लेखे मंगिए होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुनिए सुच संयमो जम नेड़ ना आवे नाए सुनिए घट चानना अनेर गुआवे नाए सुनिए आप बुझिए लाहा ना पावे नाए सुनिए पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुनिए मुख उजले नाउ गुरमुख त्यावे सलोक महला पहला तर नारायण सभा नाल पूज करे रखे नवाल कुन्नू चन्नन फुल चढ़ाए पैरी पै पै बहुत मनाए माणुआ मंग मंग पहने खाए अंधी कमी अंध सजाए।

सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब।

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम नानक सच्चा सच नाई सच सभा दीवान पौड़ी नाए मने सुख उपजे नामे गत होई नाए मने पत पाई है हिरदय हर सोई नाए मने पव जल लंघी है फिर बिघन ना होई नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई नानक सतगुर मिले नाउ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे किसनो कहिए नानका किसनो करता दे हुक्म रहाए अपने।

सब कारण करता करी देखै वारू वार जे चुपै जे मंगिए दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजे नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरे नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख न होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाउ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता पुकारंता अजानंता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाही सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाईऐ पाई नाम निरंजन वरतदा रविया सब ठाई गुरपूरे ते पाईऐ हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन जी वंदिया पत नहीं मोया मंदी सोए लिखिया होए नानका करता करे सो होए महला पहला रन्ना हुईया बोधिया पुरस होए सयाद सील संयम सोच पन्नी खाना खाज आहाज शर्म गया करे अपने पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल पौड़ी बाहर भस्म लेपन करे अंतर गोबारी खिंता झोड़ी बहु भेख करे दुर्मत अहंकारी साहिब शब्द ना ऊचरे माया मोह पसारी अंतर लालच भरम है भरमै गावारी नानक नाम ना चेतई जुए बाजी हारी सलोक महला पहला लख सिउ प्रीत होए लख जीवन क्या खुशियां क्या चाऊ विछड़िया विस होए विछोड़ा एक घड़ी मह जाए जे सो वरिया मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए मिठा खादा चित न आवे कौड़तन ताए जाए मिठा कौड़ा धोए रोग नानक अंतव गुत्ते भोग चक चक चखना झगड़ा चाख चक चक जाहे चखै तिन पास महला पहला कापड़ काठ रंगाया रंग घर गच कीते बागे बाग साध सहज कर मन खेलाया तै सह पासो कहन कहाया मिठा करके कौड़ा खाया तिन कौड़ै तन रोग जमाया जे फिर मिठा पेड़ै पाए तौ कौड़तन चूकस माए नानक गुरमुख पावै सोए जिसनो प्राप्त लिखिया हुए पौड़ी जिनकै हिरदै मैल कपट है बाहर तो आया कूड़ कपट कमावन दे कूड़ प्रगती आया अंदर हुए सो निकलै नह छपै छपाया कूड़ै लालच लगिया फिर जूनी पाया नानक जो बीजै सो खावना करतै लिख पाया सलोक महला दूजा कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार दे दे लैना लै लै देना नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम पवै संसार अमृत बाणी तत्व खानी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज हुक्मै विच रखै हुक्मै अंदर वेखै नानक अगो हउमै तुटै तां को लिखिए लिखै महला पहला वेद पुकारे पुन पाप सुर्ग नरक का बीयो
जो बीजै सो उगवै खांदा जाणै जीओ ज्ञान सलाहे वड्डा कर सचो सच्चा नाऊ सच बीजै सच उगवै दरगाह पाईऐ थाऊ वेद वपारी ज्ञान रास करमी पल्लै होए नानक रासी बाहरा लद ना चलिया कोई पौड़ी निम बिरख बहु संची है अमृत रस पाया बिसियर मंत्र वसाई है बहु दूध पी आया मनमुख अभिन ना भिजई पत्थर नवाया बिख मह अमृत सिंची है बिख का फल पाया नानक संगत मेल हर सब बिख लह जाया सलू

महला पहला मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंडे कवल दिसन खरे कुरूप एक कह जान है कहया बुझ ते नर सुगड़ स्वरूप एक ना नाद ना वेद ना गी रस रस कस ना जानंत एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक से नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत पौड़ी गुरमुख सब पवित है धन संपै माया हर अर्थ जो खर्च दे दें दे सुख पाया जो हर नाम त्याई दे तिन टोट ना आया गुरमुखा नदरी आमदा माया सुट पाया नानक भगता होर चेतना आवे हर नाम सुमाया सलोक महला चौथा सतगुर सेवन से बड़ भागी सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी ग्रह कटंब मह सहज समाधि नानक नाम रते से सच्चे बैरागी महला चौथा गणत सेव ना होवे कीता थाए ना पाए शब्द साध ना आयो सच ना लगो पाओ सतगुर प्यारा ना लगे मन हट आवै जाए जे एक विख अगाहां भरे ता दस विखां पछाहां जाए सतगुर की सेवा चाकरी जे चल है सतगुर पहाए आप गुआए सतगुरु।

पाई। घर मंदिर गच गीरियां किस साथ ना जाई। सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई। शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई। नानक जो देवै तिसह ना जाननी मनमुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके गे संतर भव थके भेख तारी। दूजे पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेवह माया कै व्यवहारी। अंदर कपट उधर भरन कै ताई पाठ पढ़ गवारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन्हों मैं विचों मारी। नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बिचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धरमाई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई, दुख खाना दुख भोगना गर्भै गर्भाई, नानक नाम ना चेत्यो अंतले छुड़ाई। सलोक महला तीजा, सहजे सुख सुती शब्द समाए, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाए, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे भन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न विसरे झूठे लालच होर। पौड़ी नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावह होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा जपंदिया हर नाऊ, नानक नाम मिहूणिया तिन तन खावह काउ। पौड़ी नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इहो मन लहरी विच है हउ मैं बहुत अहंकार, शब्द साध न आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै पावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे। पौड़ी सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे न चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिकमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मै वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावे मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहि वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम। पौड़ी लेखा पढ़िए हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानकिया नहद धुनी दरवाज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटिया नानक पावे पार। महला तीजा, सच पराणा ना थी नाम ना मैला होए, गुर कै भाणे जे चले बहुड़ ना आवन होए, नानक नाम वसारिया
आवन जाना दुए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुपाए। हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए। सतगुर नाल दिखालिया रल रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा, मन मुख बोल ना जाननी, उना अंदर काम क्रोध अहंकार।

आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार। नानक किसनो आखिया सब वरते आप सत्यार। महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए। नानक हो बलिहारी तिन को जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी। आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया। वलवंच कर अपाव माया हिरियाणिया जमकाल निहाले सास आव घटै बेतालिया। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए। अन दिन नाम त्याईंदे नानक सच समाए। महला तीजा सच वणंज है सच सेवंदे जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चलै सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया। विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई हर भाणा पाया। नानक हर सीती सदा रव रहे तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा पराई अमान क्यों रखी है दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया घर घर वेचण जाए। ऊना परख न आवई अड ना पल्ले पाए। जे आप परख न आवई ता पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए ता वत लहै नौ नित पल्ले पाए। धर हुंदै धन जग भुखा मोआ बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्भ करे मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो फिर आवै जाए। महला तीजा मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू। जे आप मेले करतारे अंतर शब्द रविया गुर पाया सगले दुख नवारे। हर सुख दाता सदा सलाही अंतर रखा उरतारे। मनमुख तिनकी बखीली के करे जे सच्चा शब्द सवारे। उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा शरणागत पए गुरद्वारे। नानक गुरमुख से सुहेले पए मुख उजल दरबारे पौड़ी। स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेख है विकसै मोहि माया। देश परदेश धन चराए आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा गुरमुख अमृत नाम है जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना आपे लए मलाए। महला तीजा जिया अंदर जियो शब्द है जित सह मिलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पढ़ थके भेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो दुखिए चले रोए। नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त होए पौड़ी। स्त्री पुरख अत नेहो बह मंद पकाया। दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पाया। क्यों रही है थिर जग
को कढ़ो उपाया, गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया, नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा, माया मोहे वसारिया, गुर का भउ हेत अपार, लोभ लहर सुध मत गई सच न लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार, नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरै ना बिंद, किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा, सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय, दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह गुठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए। हर तसै त्यावोह संत जन हो जो अंते लय छाए, हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादया तिन्ना दुख भुख लह जाए, जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी, गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया, तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया, हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा, अमर वे परवाहु है तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुज्जत करनी जाए, आप छोड़ सरनाए पवे मन लय रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए, नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिवलाए। महला तीजा, दात जोत सब सू

चलत संगात कहत कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जात राजा श्रमित नहीं जानी तेरी तेरे संतन की हों चेरी रहाओ हस्तु जाए सो रोवत आवे रोवत जाए सो

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह, जेहबा स्वादी लीलत लोह।

गाड़े तरै हाथ संचै समझै नहीं मूड़। धन धरती तन होए गयो धूड़। काम क्रोध तृष्णा अत जरै।

निफल पई सब सेवा, बाट पार घर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेहे परलोक जाए अपकीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मन ते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मेल, कथा पनीत ना चाली, छाड़ मन हर बेमुखन को

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत

आदि हर बिन कौन सहाई मन का मात पिता भाई सुत बनता हित लागो सब पन का रहाउ आगे कौ किस तुलहा बांध हो क्या परवासा धन का कहां बसासा इस भांडे का इतनक लागे ठन का सगल धर्म पुन फल पाव हो तूर बांच हो सब जन का कह कभी

जियो तुही गुरमुख त्यावह से अमृत पावह से सूचे हो ही अहनस नाम जपो रे प्राणी मैले हच्छे हो ही जे ही रुत काया सुख तेहा तेहो जे ही देही नानक रुत सहावी साई बिन नामै रुत के ही मलार महला पहला करो बिनो बुरे अपने प्रीतम हर वर आन मलावै सुन कन कोर सीतल मन मोरा लाल रत्ती गुण गावै बरस कना मेरा मन पीना अमृत बूंद सुहानी ही अरै गुरमोही मन हर रस लीना रहाओ सहज सुखी वर कामन प्यारी जिस गुरबचनी मन मानिया हर वर नार पई सोहागन मन तन प्रेम सुखानिया अवगण त्याग पई बैरागन अस्थिर वर सोहाग हरी सोग बजोग तिस कदे ना व्यापै हर प्रभ अपनी कृपा करी आवन जान नहीं मन निश्चल पूरे गुर की ओट गही नानक राम नाम जप गुरमुख धन सुहागण सच सही मलार महला पहला साची सुरत नाम नहीं तृपते हम मैं करत गुआया पर धन पर नारी रत निंदा दिख खाई दुख पाया शब्द चीन भय कपट ना छूटे मन मुख माया माया अजगर भार लदे अत भारी मर जन्मे जन्म गवाया मन भावै शब्द सुहाया प्रम प्रम जोन भेख बहु कीने गुर राखे सच पाया रहाउ तीरथ तेज निवार ना नाते हर का नाम ना पाया रतन पदार्थ पर हर त्यागया जात को तत ही आया बिस्टा कीट पये उतही ते उतही माहे समाया अधिक स्वाद रोग अधिकाई बिन गुर सहज ना पाया सेवा सुरत रहस गुण गावा गुरमुख ज्ञान बीचारा खोजी उपजै बादी बिनसै हम बल बल गुर करतारा हम नीच होते हीन मत झूठे तू शब्द सवार ना।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साध न जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस कना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभयान मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सियों अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलिया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत पा।

करारा पर कन पर लोभा हम मैं बिखे बिकार दुष्ट भाऊ तज निंद पराई काम क्रोध चंडार महल में बैठे अगम अपार पीतर अमृत सोई जन पावै जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाव दुख सुख दो सम कर जाने बुरा भला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई सत संगत गुर प्यार एहन सलाहा हर नाम प्रापत गुरदाता देवन हार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बलाई हर मेले मेलन हार मलार महला पहला कर दूजा

ब्रह्मा बिचन में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आ

जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हों मैं शब्द जलाई सच्ची भगत करहै दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाउ त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हौ मैं कर्म कमाए साहिब भावे सोथीऐ पये किरत फराहे सतगुर भेटै मन मर रह हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए चौथै पद वासा होया सच्चै रह समाए मेरा हर प्रभ अगम अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझिऐ शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिलै शांति उपजै अन दिन नाम लै मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुर

मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकत कहानी आपे दया करे सुखदाता जपिए सारंग पाणी आवन जाना बहुड़ ना होवे गुरमुख सहज ते आया मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया साचे ही सच साच पतीजै विचों हो आप गवाया।

अंतर वस्या अलख्य पेवा गुरमुख होए न खाई। नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई। मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान। गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम। अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाउ। मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान। इहो मन खेलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै। जाय आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वासे आवै। इस मन की बिद मन हूं जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार। मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे आसमाई। एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई। मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता। गुर कै शब्द हर त्याई रहाउ मन तन भीजै एक लिव लागै सहजे रहे समाई। गुर प्रसादी भ्रम पौ भागै एक नाम लिवलाई।

गुर परछादी बूझो भाई सदा रहो हर की शरणाई। सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम बखाणे सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगे शीस तरे सदा अलग रह निर्भ

नानक कवन बिद करे क्या कोए सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उर धार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हउ मैं ममता बहु मोह वधाया दूजै पाए मन मुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपियै सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई सत संगत की धूर परी उड नेतनी सब दुरमत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी तपै भगीरथ आनी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हर

रह बस्यो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हों तिनकै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन

सोई हर जन का हर आपे जन मह आप रखांत तन तन गुरु नानक समदर्सी जिन निंदा उस्तत तरी तरांत मलार महला चौथा अगम गोचर नाम हरि उत्तम हर कृपा ते जप लया सत संगत साध पाई वट भागी संग साधु पार पया मेरा मन आनंद ने आनंद पया गुरु प्रसाद नाम हर जपया मेरे मन का भ्रम पौ गया रहाउ जिन हर गाया जिन हर जपया तिन संगत हर मेलोह करमया तिनका दर्श देख सुख पाया दुख हम मैं रोग गया जो अन दिन हृदय नाम त्यावह सब जन्म तिन्ना का सफल भया वे आप तरे सृष्ट सब तारी सब कुल भी पार पया तुदे आपे आप अपाया सब जग तुदे आपे वस कर लिया जन नानक को प्रभु कृपा तारी बिख डुबदा काढ़ लिया मलार महला चौथा गुर प्रसादी अमृत नहीं पिया तृष्णा भूख न जाई मन मुख मूड जलत अहंकारी हम मैं विच दुख पाई आवत जात बिरता जन्म गवाया दुख लागे पछताई।

जाई सार संभाल माता मुख नीरै तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाऊ चंचल मत बारक बपरे की सर्प अग्न कर मेलै मात पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खेलै जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निदान ग्रह तेरै मन बांचै सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगै सो देना नानक बारक।

देखे। ग्रह मंगल सोहला वी रहाउ, मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहन मिलियो, भगत करो निव पाए, जब प्रिय

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निद छोड़ आन को पूजह, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाउ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना दार हो प्रभ करते।

त्यागी हम एक खेन तिस बिन रह न सको प्रीत हमारी लागी रहा उनके संग मोहे प्रभ चित आवे संत प्रसाद मोहे जागी।

प्रिय संग राती एहं मैं कीती ठाई भई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारे।

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाउ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातहु, चरण कमल लेव लाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास सरनाया। मलार महला पंजवां, बिसरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिलवे की, चरण कमल रस पीवन रहाउ। जिनको प्यास तुम्हारी।

अंतर्जामी सब मह वरतै ता भउ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथानाथ दीन दुख भंजन

तुद पानी नानक तिन कै सद कुरबाणी मलार महला पंजवां परमेश्वर होआ दयाल मेघ वरसै अमृत धार सगले जी जंत तृप्तासी कारज आए पूरे रास्ते सदा सदा मन नाम संभाल गुरपुरे की सेवा पाया एथे उथे निबह नाल रहाउ दुख पन्ना पै भंजन हार।

आया करता आप सदा सदा मन तिसनु जाप दृष्ट धार राखे सब जंत गुण गाव हो नित नित भगवंत एको करता आपे आप हर के भगत जान है प्रताप नावे की पैज रखदा आया नानक बोले तिसका बुलाया मलार महला पंजवा गुर सरनाई सगल निदान साची दरगाह पाईए मान प्रम पौ दुख दर्द सब जाए साध संग सद हर गुण गाए मन मेरे गुर पूरा सलाहि नाम निदान जपो दिन राती मन चिंदे फल पाई रहाउ सतगुर जे वडे अवर ना कोई गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो

गुआई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की सोभ अत अपार प्रिय अमोग कैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने

रहाउ दर्श सफलियो दर्श पेखियो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारी विषम विषम विषम भई अग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी मलार महला पंजवां बरस सरस आ गया होहे आनंद सगल भाग रहाउ संत संगी मन परफड़ै मिल मेघ धर सुहाग कन घोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर ऐसो हर संगी मन मोह।

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श

सखाई तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई रहाओ सरवर कमल किरण अकासी दिगसै सहज सुपाई प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मलाई चात्रक जल बिन प्रियो प्रियो टेरे बिलप करे बिललाई कनहर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांदी पिर देस नवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रवृदय नवासी भगत रत्ती हर खाई प्रियो प्रियो करै सबै है जेती गुर भावै प्रियो पाई प्रियो नाली सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाई अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा।

बचनी दिखिया गुरमत जारी मन तन हेम भय सच पाया हर की भगत निरारी जेती है तेती तुद जाचे तू सर्ब जिया दयाला तुमरी सरन परे पत राखो साच मिले गोपाला बांधी तंद अंध नहीं सूजे बद्धक कर्म कमावे सतगुर मिले ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावे निर्गुण दे साच बिन काची मैं पूछूं गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चातरक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई।

मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई रूखी बिरखी ऊडो भूखा पीवा नाम सुपहाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई प्रिया बिन श्रृंगार करी तेता तन तापे कापर अंग ना सुहाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सको बिन मिले नींद ना पाई फिर नजीक ना बूझे बकड़ी सतगुरु दिया दिखाई सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई कहो नानक तुझते मन मानिया कीमत कहन ना जाई मलार महला पहला।

रहाउ सतगुर शब्दी पादर जान गुर कै तकिए साचै तान नाम संभाल सरूड़ी बाण थै पावै दर लहस प्राण बूढ़ा बैसा एक लिवतार गुर कै शब्द नाम आधार ना जल डूंगर ना ऊंची तार निज कर वासा कह मागना चालन हार जित कर वसै है तू है बिद जान है बीजो महल ना जापै सतगुर बाजो समझ ना होवी सब जा

गुर शब्द संयापे एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर एक सतगुर कै पै नाम आधार साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार नाम पै पाए हृदय वसाही गुर करनी सच बाणी हिंद वरसै धरत सुहावी घट घट जोत समाणी कालर बीजस दुरमत ऐसी निगुरे की निशानी सतगुर बाजो कोर अंधारा डूब मोए बिन पानी जो किश कीनो सो प्रभु रजाए जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए हुक्मे भाता कार कमाए एक शब्द राचे सच समाए चहो दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा चहो दिस नाम पतालं सब मह शब्द वरतै प्रभ साचा कर्म मिलै बयालं जामन मरना दिसै सिर उभो खुदया निंदरा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं मलार महला पहला मरण मुक्त गत सार ना जानै कंठे बैठी गुर शब्द पछानै तू कैसे आड़ फाथी जाल अलख ना जाचै हृदय संभाल रहाऊ एक जी कै जिया खाही जल तरती बूढ़ी जल माही सर्ब जी की ए प्रतपानी जब पकड़ी तब ही पछतानी जब गल फास पड़ी अत भारी ऊड़ ना साकै पंख पसारी।

चार करै विवेक बुद्ध पाई पुरखै पुरख मलाई धातुर बाजी संसार अचेत है चलै मूल गवाई लाहा हर सत संगत पाई करमी पल्ले पाई सतगुर विन किन न पाया मन वेखो हृदय विचार वडभागी गुर पाया भव जले उतरे पार हर नामा हर टेक है हर हर नाम आधार कृपा करहो गुर मेलो हर जियो पावो मोख द्वार मस्तक ललाट लिखिया धुर ठाकुर मेटना ना जाए नानक से जन पूर्ण होए जिन हर भाणा पाए मलार महला तीजा वेद बाणी जग वर्तदा त्रै गुण करे बीचार बिन नावे जम डांड सह मर जन्मै वारु वार सतगुर भेटे।

हर हर नाम त्याई रहाऊ। हरे अपने भाणे सेठ पाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने भाणे मन निर्मल किया, हर सिउ लागा प्यार। हर कै भाणे सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जे वड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई।

नह निज कर होवै वास, जम काल सिरों ना उतरै अंतर कपट बनास। हर नावै नु सब को प्रताप दा, विण भागा पाया ना जाए। नदर करे गुर भेटिया, हर नाम वसै मन आए। नानक नामे ही पत उपजै, हर स्यों रहा समाए। मलार मोहल्ला तीजा, अष्टपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कृपा करे गुर की कारै लाए, दुख पल्लण हर

कमल प्रगास तित घट नामै नाम निवास हऊ मैं भगत करे सब कोई ना मन भीजै ना सुख होए कह कह कहण आप जनाई बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अन दिन नाम रहे लिवलाए सद ही नाम वेखह हजूर गुर कै शब्द रहया भरपूर आपे बख्शे दे प्यार हम मैं रूप।

सब सुख साचो नाम पौड़ी आपी ने आप साज आप पछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सवाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला वैद बुलाया वैद की

राम राजा आया, दैंता मारे ताई हुक्म सबाया, ईश महेश्वर सेव तिन्नी अंत न पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरो फरमाया, सलोक महला दूजा सामने आया हे सखी, संते चित करे हो नानक चूर मर है दोहागनी, जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सामने आया हे सखी, जल हर बर सनहार नानक सुख समन सोहागनी, जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए, मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया, मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया, आप भिड़ै मारे आप आप कारज रचिया, सबना खसम एक है गुरमुख जानिए, हुक्मी लिखै सिर लेख बिन कलम मसवाणिए, सत संगत मेलाप जितै हर गुण सदा वखाणिए, नानक सच्चा शब्द सलाही सच पछाणिए।

वरसै लाए झड़ी नानक पाण चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघ हाथ किश नाही जिन इहो मेघ पठाया।

सब कर्ण पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार।

हर चरनी रहे लिवलाय। ज्यों जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक समवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो गई।

आप छड़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार आपे वेखै सुने आप सब सह दे आधार सब मह एक वरतदा सिर सिर करे विचार गुरमुख आप विचारी है लग

गुणवंती मैल पाया अवगुणवंती दूर अंतर तेरा हर वसै गुरमुख सदा हजूर कूक पुकार ना होवे नदरी नदर निहाल नानक नाम रते सहजे मेले शब्द गुरु कै काल महला तीजा बाबीहा बेनती करे कर कृपा देहो जी दान जल बिन प्यास ना उतरै

पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगाह होए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया कित आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार श्लोक महला पंजवां रात ना विहावी।

सच समाया सलोक महला तीजा सावन सरसी कामणी गुर शब्दी विचार नानक सदा सुहागणी गुर कहित अपार महला तीजा सावन दजै गुण बाहरी जिस दूजै पाए प्यार नानक पिर की सार ना जाने सब शिंगार खुआर पौड़ी सच्चा अलख अपे हठ ना पतीजै एक गावे है राग परियां राग ना पीजै एक नच नच पूरे है ताल भगत ना कीजै एक अन ना खाहे मूरख तिना क्या कीजै तृष्णा हुई बहुत किवै ना तीजै कर्म बदै कैलो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पी जई हर भगती असनेह गुरमुख की जई सलोक महला तीजा गुरमुख मलार।

अनखन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ गुरमुख शब्द संभालिय सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याए पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया।

शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई विण सतगुर ना लगे प्यार तू प्रभ सब तुद सेम दे एक ढादी करे पुकार देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार सलोक महला पहला राती काल कट है दिन काल सिज्जै काया हुए पराल वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल भुलिया चुक गया तपताल अंधा चख चख पया चेर पिछै रू वह लिया वह फेर बिन बूझे किस

जिन चेतना आवे महला पहला मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जगत बहुराना।

सच पछाणिए, लिखिया पल्ले पाए सो सच जानिए, हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए, भौजल तारन हार शब्द पछाणिए, चोर जार जुआर पीड़े कहानिए, निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए, गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाऊ नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाउ महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाऊ फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाऊ सो पढ़िया सो

बिन भरम ना कटिया नाम ना लगे प्यार सतगुर ते पौ उपजे पाइय मोख द्वार पै ते सहज पाइय मिल ज्योति ज्योत अपार पै ते पैजल लंघी है गुरमति विचार पै ते निरपो पाइय जिस

पलंग पौ कै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला।

सब विकार शब्द निशानिया साधु संग उधार भय निकाणिया सिमर सिमर दा तार सब रंग माणिया प्रगट भया संसार मेहर शावानिया आपे बख्श मला।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

गोपाल राय अकुल निरंजन भगत दान दीजै जाचह संत जन रहाउ जाचै घर दिग दिसै सराय क्या बैकुंठ भवन चित्र साला सप्त लोक समान पूरी अले जाचै घर लक्ष्मी कुवारी चंद सूरज दीवड़े कौतक काल बपड़ा कोटवाल सो करा सिरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचै घर कलाल ब्रह्मा चतुर्मुख डांवड़ा जिन विश्व संसार राची ले जाचै घर ईश्वर बावला जगत गुरु तत सारखा ज्ञान पाखी ले पाप पुन जाचै डांगिया द्वारै चित्र गुप्त लेखिया तर्म राय।

जाचै भस्मति सुऐसा राजा त्रिभुवनपति जाचै कारे कूर्मा पाल सहस्रफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवै करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नख परसेव जाचै सुरसरी सप्त समुंद जाचै कड़खली एते जी जाचै वर्तनी सो ऐसा राजा त्रिभुवन धनी जाचै कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद निजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचै है करी सर्व व्यापक अंतर हरि।

चौथा जप मन राम नाम परगास हर के संत मिल प्रीत लगानी विचे ग्रह उदास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नर हर प्रभ कृपा करी कृपास अन दिन आनंद भया मन बिगसिया उदम भय मिलन की आस हम हर स्वामी प्रीत लगाई जितने सास लिए हम ग्रास किल बिख दहन भय खिन अंतर टूट गए माया के फास क्या हम किर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रवतास अवगन यारे पाथर पहारे सत संगत मिल तरे तरास जेती सृष्ट करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बिख्यास हमरे अवगुण संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास कानड़ा महला चौथा मेरा मन राम नाम जपियो गुरवाक हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक रहाओ नाना रूप रंग हर केरे घट घट राम रवियो गुपलाक हर के संत मिले हर प्रगटे उगर गए बिख्या के ताक संत जना की बहुत बहु शोभा जिन उर तारियो हर रस कर साक हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक हर के संत जना मह हर

भेर परे बिख बिखिया सतगुर काढ लिए देहाथ रहाओ स्वामी अपै निरंजन नरहर तुम राख ले हो हम पापी पात काम क्रोध बिखिया लोभ लुभते काष्ट लोहो तरे संग साथ तुम वड पुरख वड अगम अगोचर

अध्याय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवा।

कान्हड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नारेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड हो भाग मथाम रहाउ जित ग्रह मंदर हर होत जास

स्थार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर भेख न पाइया हर ब्रह्म जोग हर पाइया सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू भरपुर रहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जान है सब बिद बूझ आपे जन नानक के प्रभ घट घटे घट घटे घट हर घाट कानड़ा महला चौथा जप मन गोविंद माधो हर हर अगम अगाधो मत गुरमत हर प्रभ लादो तुर हो लिखे ललादो रहाओ दिख माया संच बहु चित बेकार सुख पाइये हर भज संत संत संगति मिल सतगुरु गुर साधु ज्यों शोहे पारस मनूर भय कंचन त्यों पतत जन मिल संगति सुध होवत गुरमति सुधहादु ज्यों कासत संग लोहा बहुतरता त्यों पापी संग तरे साध साध संगति

कुल सगल तराधु कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप नहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै वोट पराधी खिन महतारै जां को चीत आवै गुर अपना तां को दुख नहीं तिल सुपना जां को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवा अरादो तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

सन अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यागो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मह मन प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया पार ब्रह्म जब भई।

तैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाउ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत ए दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसह गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भय ठाकुर स्यों।

तेरू जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की सोभा जत कत पेखो आहियो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यो परदा लाहियो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहियो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहू तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते सात संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले।

आन दा सुख सहज मूरत तिसे आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नास है रिद पयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

काम तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा धन ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा उचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

एक समानु मुख बकनु मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक का।

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किछ लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवा, हिये को प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भये तिह संगे।

गहे रहे अटकाए, अनक भांत की एकै जाली, ताकी गंठ नहीं छोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही

बढ़ाई। भौजन बिखम नाम हर तारे, अगम पदार्थ लाल अमोला, भयो प्राप्त गुर चरनारे। कहो नानक प्रभ भये कृपाला, मगन भये ही रह दरसारे। कानड़ा मोहल्ला पंजवा, साजन मीत स्वामी नेरो, पेखत सुनत सबन कै संगे।

आज्ञा दृष्टि आवत सब परगट, हीहा मोहयो परम अंधेरो, अटके ओ सुत बनता संग माया, देव नहार दा तार बसेरो। कहो नानक एकै पार उसो, बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा, बिखै दल संतन तुमरे गाहियो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराशत, दर्शन भेट मटाहयो, भयो प्रगास आनंद उजियारा, सहज समाध समाहयो। कौन कह तुम ते कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा, बूढ़त प्राणी हर जप पीरे, बिनसै मोह भरम दुख पीरे रहाओ। सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा, सिमरत नाम मन है सुख पाई है, साध जना मिल हर जस गाई है, रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन के माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरहो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा, मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दुख सगल मल हरसन, पावन धामन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूर्ण अबनासी, आन अपाव थकत नहीं करसन। कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनक बरिया रहाओ। अहं मत अनरत कुमित हित प्रीतम, पेखत भ्रमत लाख गरिया, अनित व्यवहार अचार बिदहीनत, मम मत मात कोप जरिया, करुण कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उधर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा, जी प्राण मान दाता, हर बिसरते ही हान रहाउ, गोविंद त्याग आन लाग।

आगह दिखै रहस्यो असक्त मूढ़े काहे सुखमान काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान। कानड़ा महला पंजवां अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा में बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोई ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौ बल बल सद बल जास। कानड़ा महला पंजवां घर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारन नाम प्रिय तेरे नव निध नाम निधान हर केरे हर रंग रंग रंग अनुपेरे काहे रे मन मोहे मगनेरे नैनो देख साध दरसेरे।

मित्र करेर अठसठ मज्जन मैल कटेर सास सास त्याव मुख नहीं मोर किस संग ना चाले लाख करोर प्रभ जी को।

दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही यो तरसना।

कीत हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजाचार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर।

करो, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी, सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहो समाए। एक तू ही तू ही तू ही कानड़ा महला पंजवां घर अठवां।

आई पतत पावन बिरद स्वामी उदरते हर त्याई रहाओ संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारो सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन सियो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सुख बिहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवा कर दसवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ, दूत संग निवार, रहाओ, कोट जन्म जोन प्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई, मिलेओ नाम आधार, दलाभ जन्म सफल नानक, पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण नदान प्रगट्यो एह चोले, चरण लुभाए आनत जाए, थान थनाए सर्व समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवा, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्व समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निद, जन नानक संतरे नाई।

अरबिंद शासन निसभोर रहाउ लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन धन सर्वसु हर गुण निजे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक बिन से ओ दुख कोर।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदियां।

वह सुख पावे, सतगुरु सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गु, तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीच हर धार चुआवे गु, राम नाम इक तिल तिल गावे, मन गुरमत नाम समावे गु, नाम सुनह नामो मन पावे, नामे ही तृप्तावे गु, कनक कनक पहरे बहु कंगना, कापर पांत बनावे गु, नाम बिना सब फीक फिकाने, जन्म मरे फिर आवे गु, माया पटल पटल है पारी, कर घूमन घेर कलावे गु, पाप बकार मनूर सब पारी, दिख दुत्तर तरयो ना जावे गु, पौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावे गु, राम नाम हर पेटी है, हर राम नाम समावे गु, अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तुरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुरु नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करे अभमानी कड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्यो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुरसंगत नाव तरावै गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुरियागै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै गु।

दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया मत मलीन बिगसावै गो हर हर कृपा करहु जग जीवन मैं श्रद्धा नाम लगावै गो नानक गुरु गुरु है सतगुरु।

खाए खर्च दे वह बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवैगो। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन गुर शरण

साकत नारह सतगुर नहीं पिया, ते बेमुख हर परमावै गो। लोभ लहर सुवान की संगत, बिख माया करंग लगावै गो। राम नाम सब जग का तारक, लग संगत नाम त्यावै गो। नानक राख राख प्रभ मेरे, सत संगत राख।

आए, जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरह तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अम्यो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाइय हर त्याय, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाय नित त्याय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्याव है हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर यज्ञ में आगो चर यज्ञ में हर हर मिलिया आए अचिंत हर आपे घट घट वरतदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे भिख्या पाएदा सब सिष्ट उपाई जी जंत हर देव दान दयाल प्रभ हर मांग है हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गाव है हर गुण शंत महला चौथा हर कव सज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब आसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी

हर सहज समाद समाए, जन नानक हर हर क्याओ मन, गुर तुठा मेले माए, महला चौथा हर इकस सेती पिरहड़ी, हर इको मेरा चित, जन नानक एक आधार हर, प्रभ इकस ते गत पत, पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वडभागी अनहद वजिया, आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोविंद गजिया, आदि जगाद वेस हर एको, मत गुरमत हर प्रभ भजिया, हर देव दान दयाल प्रभ, जन राखो हर प्रभ लज्जिया, सब धन कहो गुर सत गुरु, गुर सत गुरु जित मिल हर पड़दा कज्जिया। सलोक महला चौथा, भगत सरोवर उछलै सुभार भरे वहन, जिन्ना सतगुर मन्निया जन नानक वड भाग लहन। महला चौथा, हर हर नाम असंख हर, हर के गुण कथन ना जाहे, हर हर अगम अगाध हर, जन कित बिद मिलह मलाहे, हर हर जस जपत जपंत जन, एक तिल नहीं कीमत पाए, जन नानक हर अगम प्रभ, हर मेल लै हो लड़ लाए। पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर, क्यों कर हर दर्शन पिखा, किस वखर हुए सो वर्णिया, तिस रूप ना रिखा, जिस बजाए आप बजाए दे, सोई जन दिखा, सत संगत सत गुर चट साल है, जित हर गुण सिखा, तन तन सो रसना तन कर, तन सो पहधा सत गुरु, जित मिल हर लेखा लिखा। सलोक महला चौथा, हर हर नाम अमृत है, हर जपिया सतगुर पाए, हर हर नाम पवित है, हर जपत सुनत दुख जाए, हर नाम तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक लिखिया तुर पाए, हर दरगाह जन पैनाइयन, जिन हर मन वसिया आए, जन नानक ते मुख उजले, जिन हर सुनिया मन पाए। महला चौथा, हर हर नाम निदान है, गुरमुख पाया जाए, जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सत गुर मिलिया आए, तन मन शीतल होया शांत वसी मन आए, नानक हर हर चौंदिया सब दालद दुख लह जाए। पौड़ी हम वारिया तिन को सदा सदा, जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा देखिया, तिनको मिलिया मेरा सतगुरु, जिनको तुर मस्तक लेखिया, हर अगम त्याया गुरमति, तिस रूप नहीं प्रभ रेखिया, गुर बचन त्याया जिन्ना अगम हर, ते ठाकुर सेव करल एकिया, सब कहो मुखो नर नर हरे, नर नर हरे, नर नर हरे, हर लाहा हर भगत वसेखिया। सलोक महला चौथा, राम नाम रम रव रहे, रम रामो राम रमीत, घट

हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले जिन लिखिया तुर हर प्रीत जन नानक नाम ते आया गुर बचन जपियो मन कीत महला चौथा हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो भाग वस्या बट भाग गुर पूरै देखा लिया नानक हर लिव लाग पौड़ी तन तन सुहावी सफल घड़ी जित हर सेवा मन पानी हर कथा सुनाव हो मेरे गुर सिख हो मेरे हर प्रभ अकथ कहानी क्यों पाई है क्यों देखी है मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी हर मेल दिखाए आप हर गुर बचनी नाम समाणी तिन विटोह नानक वारिया जो जप दे हर निर्बाणी श्लोक महला चौथा हर प्रभ रत्ते लोयना ज्ञान अंजन गुर दे मैं प्रभ सज्जन पाया जन नानक सहज मिले महला चौथा गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाई नाम चितवै नामो

नाम उपजै तृष्णा भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्लै पाई पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक नामेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाउ गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुर साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संघा

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल। हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो, हरि उत्तम हर नाम अमोल। जिन त्याया हृदय दिन सरात, ते मिले नहीं हर रोल। वड भागी संगत मिले, गुर सत गुर पूरा बोल। सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो, जित चूका जम झगड़ चगोल। श्लोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया, सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे, जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया, हर हर नाम पिखन। जे कर दूजा देख दे, जन नानक काढ़ दे चन पौड़ी। जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई, जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई। मात पिता सुत प्रात मीत, तिस बिन नहीं कोई। घट घट अंतर राव रहया, जपयो हो जन कोई। सगल जपो हो गोपाल गुण, प्रगट सब लोई। श्लोक महला चौथा, गुरमुख मिले से सजना, हर प्रभ पाया रंग। जन नानक नाम सलाहे तू, लुड लुड दरगह वान्य। महला चौथा, हर तू है दाता सब सदा, सब जी तुम्हारे। सब तुदैनो अराध दे, दान दे प्यारे। हर दाता दातार हाथ कढ़िया, मीह उठा संसारी। अनजमिया खेती भाओ कर, हर नाम समारे। जन नानक मंगै दान प्रभ, हर नाम अधारे पौड़ी। इच्छा मन की पूरी है, जपी है सुख सागर। हर के चरण अराधी है, गुर शब्द रतनागर। मिल साधु संग उधार होए, हाटै जम कागर। जन्म पदार्थ जीती है, जप हर बैरागर।

जन्म जन्म की मल उत्तर है, मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटी है, हर के गुण गावे, आप तरह संगी तराही, सब कटम तरावे, जन नानक तिस बलिहार।

तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाऊ। हर के नाम असंख अगम है, अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी, एक तिल नहीं कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है, गुण गोविंद अंत ना पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बहु जपिया था ना पाया। पुस्तत कर है तुमरी जन माधो, गुण गाव है हर राया। तुम जल निद हम मीने तुमरे, तेरा अंत ना कतहु पाया। जन को कृपा करहो मधुसूदन, हर देव हो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसिया। हर हर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ। गुर के पग सिमरों दिन राती, मन हर हर हर बसिया। हर हर हर कीरत जग सारी, कस चंदन जस कसिया। हर जन हर हर हर लिव लाई, सब साकत खोज पया। जो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन शोहे जलिया। जन के तुम हर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखिया। कहां पया दैत करी बखीली, सब कर कर झर परिया। जेते जी जंत प्रभ किए, सब काले मुख ग्रसिया। हर जन हर हर हर प्रभ राखी, जन नानक सरन पया। कल्याण महला चौथा, मेरे मन जप जप जगन्नाथे। गुरुपदेश हर नाम ते आयो, सब किल बिख दुख लाथे रहाउ। रसना एक जस गाए ना साके, बहु कीजै बहु रसनथे। बार बार खिल पल सब गाव है, गुण कह ना सकह प्रभ तुमन्थे। हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी।

सब तन मन अर्पौ अर्प अरापौ कोई मिले प्रभ मिलथे हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा हम तुच्छ कर कर बरंथे हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे जन नानक के प्रभ समरथे। कल्याण महला चौथा मेरे मन जप हर गुण अकथ संथई धर्म अर्थ सब काम मोख है जन पीछे लग फिर थई रहाउ सो हर हर नाम त्यावै हर जन जिस बड़ भाग मथई जह दरगह प्रभ लेखा मांगे तह छूटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख हो मैं मैल लग थई गुर धार कृपा हर जल नावाई सब किल विख पाप गथई जन कै हृदय अंतर प्रभ स्वामी जन हर हर नाम पज थई जह अंती अवसर आए बनत है तह राखै नाम साथी जन तेरा जस गावे हर हर प्रभ हर जपियो जगन थई जन नानक के प्रभ राखे स्वामी हम पात्र रख बुड थई। कल्याण महला चौथा हमरी चितवनी हर प्रभ जान और कोई निंद करे हर जन की प्रवता का कहे आए कि तिल नहीं माने रहाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत जो सब ते ऊच ठाकुर भगवान।

जां की भगत मेरा प्रभ मान हर के चोज वडान देख जान जो खोटा खरा एक निमख पछान ताते जान को आनंद भया है।

नारायणी सगल भगत जाच है सुख सागर भावनिद तरन हर चिंतामणि रहाउ दीन दयाल जगदीश दमोदर हर अंतर जामी गोबिंदे ते निर्भउ जिन श्री राम ते आया गुरमत मरार हर मुकंदे जगदीश्वर चरण सरन जो आए ते जन भावनिद पार परे भगत जना की पैज हर राखै जन नानक।

दर्श रे परस परस गुण गाई नानक तात तात स्यो मिलिय हीरे हीर बेधाई है कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा साधन।

भेद कथत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाउ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत एह पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया अजर पद कैसे जरूं रहाउ बिशन महेश सिद्ध मुन इंदरा कै दर सरन परूं काहू पहराज काहू पह सुरगा कोट मधे मुक्त कहूं कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहूं कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जून कल काल जाल दुख बनासन हर

गुरपूरे सो प्रसन्न भय सदा सुख कल्याण रहाव। सर्व कार्य सिद्ध भय गाय गुण गोपाल, मिल साध संगत प्रभु सिमरे नाठिया दुख काल। कर कृपा प्रभ मेरे आ करूं दिन रहन सेव, नानक

परमेश्वर निश्चल सच शब्द निशान रहाउ। हर बिन आन न कोई समरथ, तेरी आस तेरा मन तान। सर्ब कटांके दाते स्वामी, देहे सो पहरन खान। सुरत मत चतराई।

जपन संग जम काल तिस ना खामनु मुकत जुगत अनक सूख हर भगत लवै ना लामनु प्रभ दर्स लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धामनु कल्याण महला चौथा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यों है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारी गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हो ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै धावत ताए धावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सतगुर पारस की जय रहाउ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बांछ है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्त।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हु जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीत।

संगत जित हर रस काढ कढ़ीजै पर उपकार बोलह बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया ता।

जित मुख तू सलाही है, तित मुख कैसी भूख, नानक मूर्ख एक तू अवर भला से सार, जित तन नाम ना उपजै से तन होहे खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्म उच्चरे, संकर छोड़ी माया, जय कारण सिद्ध भये उदासी, देवी मर्म ना पाया। बाबा मन साचा मुख साचा कहिए, तरिय साचा होई,

शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सत गुरु रखवाला जाकै बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गत अवगत की चिंत नाही सत गुरु फुरमाई जाकै आस नाही निरास नाही चित सुत समझाई तंत को परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दोहे सम कर जान क्या कही है सर्बे रहया समाई जो किछ वरतै सब तेरी रजाई रहाउ प्रगटी जोत चूका भगवान सतगुरु दिया अमृत नाम।

जाय। प्रभाती महला पहला। अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन। अठ सठ तीरथ संग गए। गुर उपदेश जवाहर मानक। सेवे सिख सो खोज लह।

पंच तस्कर तावत राखी। चूका माने अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी। ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान। दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान। हिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए। सिपत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह। प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया।

जैसे अरहट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होर फेर भरियत है, तैसो ही एहो खेल खसम का, ज्यों उसकी वडियाई। सुरती कै मार्ग चल कै उल्टी नदर परगास्ती, मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी, कौन गिरही कौन उदासी। जिसकी आसा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण, जिसते हुआ सोई कर मानिया, नानक गिरही उदासी सो परवान। प्रभाती महला पहला, दिष्ट बिकारी बंधन बंद है, हाँ।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गावार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वखाणी है

साक्षार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवे तिसको जयकार तू बख्श जात पत होए नानक कह कहावे सोए प्रभाती महला पहला खाया मैल बधाया पेंदे घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाऊ बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारिय छूटस साच नाय जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए जग खोटो सच निर्मलो

जर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

रस कमल बिगासी सस कर सूर समाया काल बिंदु समनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूलै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रब रहिया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावे चौ छे मह सन्यासी जोगी का पड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहाउ ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराई बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचाचारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले मलाया दुख परासत काल नसे प्रभाती महला पहला संतां की रेण साध जन संगत हर कीरत तर तारी कहां करे बपरा जम डरपै गुरमुख हृदय मोरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाउ गुर उपदेश साच सुख जाको क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है कीना ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार ने केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कहे अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

साच रहै लिवलाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग काला हा पहाई।

कहया ना चित धरै कर आचार बो संपो संचय जो किछ करै सो नरक परै एको शब्द एको प्रभु वरतै सब एकसते उत्पत चलै नानक गुरमुख मेल मलाए गुरमुख हर हर जाए रलै प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना सलाए पूरा भाग हुए मुख मस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदर हो।

जन नानक हर प्रभु कृपा प्रभाती महला चौथा गुर सतगुर नाम दरड़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप भा तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुब दे बाहां दे कड बहा जप मन राम नाम अरधंबा उपजंप पाए ना पाईए कतहु गुर पूरे हर प्रभ लाभा रहाउ राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रस भा लोहो मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हर भा हों मैं बिखिया नित लोभ लोभाने पुत कलात मोहे लुग भा तिन पग संतना सेवे कबहू ते मन मुख पूंबर परबा तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन भा ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुमन भा शका एक प्रभाती बेपास पड़ताल महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन हर हर नाम निदान हर दरगाह पावह मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ सुन मन हर हर नाम कर ध्यान सुन मन हर कीरत अठसठ माजान सुन मन गुरमुख पावह मान जप मन परमेश्वर प्रधान खिन खोवै पाप कुटान मिल नानक हर भगवान प्रभाती महला पंजवा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत रच जोत निवाजिया सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना वसारहु सेव हो सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरख सोग ते रह निरारा तां तू पावह प्राण पते रहाउ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कटंब सगल बनाए रिजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तहां सखाई जह कोई ना होवे कोट अपराध एक खिन मह तोवे।

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग जिस रस आया सोई जानै पेख पेख मन मह हैरानै सो सुखिया सब ते उत्तम होए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए सोई निश्चल आवै ना जाए अन दिन प्रभ के हाँ।

नानक उदर है जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कल मल जाहि, तिस गुर की हम

आग नाम हर गीदा इस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए बूढ़त प्राणी जिन गुरह तराया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किलबिख सब नास्ते सच नाम गुर दीनी रास्ते प्रभ की दरगाह सुभावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिन सह अज्ञान।

जो तिस पावै सो पल होस, तिस गुर कहो हौ सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम त्याई, ऐसा गुर पाईऐ वडभागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर किरपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की सरनाए, प्रभाती महला।

सदा सदा प्रभु जी कै संग उत्तरी मैल नाम कै रंग चरण कमल सिंह लागो प्यार बिनसे काम क्रोध अहंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर

कर राखे, हर नाम जपत किल बिख सब लाथे, संत साजन सिख भये सोहेले, गुरपूरै प्रभ सिहो लै मेले, जन्म मरण दुख फाहा काटिया, कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया।

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल महियल पेख भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास गुर शब्दे की नारदय निवास गुर समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक भय निहाल प्रभाती महला पंजवां।

संत संगत मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस। सर्ब कल्याण सुख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे। प्रभाती महला।

काम क्रोध अहंकार बिनसै लगै एकै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै

लोभ मोह बिन सजाए अहंताप रहाऊ। आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना जानै।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

राम मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

हं करन है खसम ना पावे साध बिन नावे होर कमावना फिक्का आवे साध दुष्टि सभा विगुची है बिकवाती जीवन बाद ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर

आई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाना बोली भाए सुपाई जो किच वरतै तुदै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे ना लागै सदा रहै सरनाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान ना जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप ना भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटै नाम संभाल, आपे सदे टिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवै सोए, बिन गुर सोजी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन

कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रव रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास जो पावे त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत शू

पाई। प्रभाती महला पहला एक तुर बख्श लये गुरपूरै सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता मेल लये सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहजै सहज मिलै सुख पाई दरगाह पैंदा जाई। दरगाह दाना बीना एक आपे निर्मल गुर की बाणी। आपे सुरता सच विचारस आपे बूझै पद निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवन फुन त्रै मिल जगत उपाया। ऐसा बल छल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जागे अंदर

तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

ज्ञान रतन प्रगट होए, मनमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जियो साजिया,

जन निर्मल हर कै नाम समाई हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख नैन सवार हर मंदिर में मन लोहट है मोहया दूजै पाई पारस भेटिया कंचन भया कीमत कही ना जाई हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोई नानक गुरमुख वणजिया सच्चा सौदा होई प्रभाती महला तीजा पै पाए जागे से जन जागरण करह हौ मैं मैल उतार सदा जाग है कर अपना राख है पंच तस्कर काढ़ मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार्ग हर पाई है मन से ही कर्म कमाए रहाओ गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हो मैं विचों जाए हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाई गुरमती मुख सोहणे हर राखिया उर तार ऐतै उतै सुख घणा जप हर हर उतरे पार हौ मैं विच जागरण ना होवई हर भगत

कीड़े बिस्ताराते मर जम्मह होहे खुआर जिनको सतगुर भेटिया तिन्ना विटोह बल जाओ तिनकी संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ पूरे भाग गुर पाईए उपाय किते ना पाया जाए सतगुर ते सहज उपजे हउमै शब्द जलाई हर सरनाई भज मन मेरे सब किछ करने जोग नानक नाम ना विसरे जो किछ करे सो होग बेपास प्रभाती महला पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मात पिता भाई सुत बनता चूगह चोग आनंद सिंह जुगता।

आसोए, तिस बिन बीजो नाई कोए, बैर बरोध शेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया।

तमाहे निदाना कहां उड़ीसे मज्जन किया क्या मसीत सिर नाए दिल में कपट निवाज गुजारे क्या हज का पै जाए एते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुर पीर हमारे कहत कबीर सुनो नर नरवे पर हो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निश्चय तरना प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो पाई खालक खलक खलक मह खालक पूर रहो सब ठाई रहाउ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुंभारे।

मन का भ्रम ना जाई रहाओ। पकर जियो आनिया देह बिनासी, माटी को बिस्मिल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया। क्या उजू पाक किया मुंह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट नवाज गुजार हो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यो मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवाकर, अदपत आद समाई, सिद्ध समाधि अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई। लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पहाई, ठाढ़ा ब्रह्मा निगम बीचार, अलख ना लखिया जाई। रहाओ तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहद बाजी, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बाणी।

आपे निर्भउ समत बिचारी जो जन जान भजह पुरखोत्तम ताकी अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत ना जानिया सर्ब निरंतर राम रहया रव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजै शब्द बाजै आनंद रूपी मेरो रामैया रहाउ बावन बिखु बन बिखे बास ते सुख लागेला सर्बे आद परम लाद काश

बिखियन स्यो अत लुभान मत नाहिन फेरी रहाउ मानस को जन्म लीन सिमरन नह निमुख कीन दारा सुख पयो दीन पगहों परी बेरी नानक

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोए धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलंग तस्य जन्म से जावद ब्रह्म ना बिंदते।

कारण करते वस है जिन काल रखी धार योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लख्यण नानक जेहे सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडलै विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापतं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिं नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करत माया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालंग जिलंत दे दीप्य वैसवांतर है बहंत अगाहा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा क्यंग ना लभ्यते अतरंग तरंग तारन है निरतनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वासुदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम प्रखोत्तमं।

संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सम मित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते असवरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन।

तिरगंत जन्म प्रष्टन है, कुकर है सुकर है गर्दब है, काक है सर्पन है तुलखल है, चरनार बिंद भजनं हृदयंग नाम धारण है, कीर्तनं साध संगीन नानक नह दृष्टंत जम दूतन है, नच दुर्लभंग धनंग रूपंग, नच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है, नच दुर्लभंग भोजनंग बिंजनंग, नच दुर्लभंग स्वास अंबर है, नच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव, नच दुर्लभंग बनता बिलास है, नच दुर्लभंग विद्या प्रवीणंग,

प्रभं जत कतह ततह दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकह सर्वत्र रमणं गोविंदह नानक लेप शेप ना लिप्यते विख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवजनह दुखियं पयंत सुखियं तै पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते नह शीतलं चंदर देव है नह शीतलं बामन चंदन है नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध स्वजन है मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरन है दयालं सर्वत्र जियां पंच दुख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है उपदेशं सम मित्र सत्र है भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियं पूर्णं पुरख नानक नाम साध स्वजन है अजापो गंत कांड मूलं।

रमण सील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाच कह, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अटवियं महानगर बासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, हे अजित सूर संग्रामं हत बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है,

परमावण है। चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारण है। अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है।

कदंच करुणा ना उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अदमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तव लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं असाज्यं।

दृढ़ंत अनक माया बस्तीर नह आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर राध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरु हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीन समय

अटुत रहै। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख बनासन है। भगत वछल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अचुत है। जेन कला धार्यो अकाशं, वै संतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं।

सिमरणं सर्वत्र जीवन है लब्धहं संत संगीन नानक श्वास मार्ग हर भगतन है मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगीन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा।

स्याम आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत सादृध्यं अच्युत बुजंत नानक बड़भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्यान खर है विखम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस्कर है हीत मोह भय भरम भ्रमण अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध पूरं अगम तीर नह लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलहं रोग खंडन है।

निमंत हुवंत मिथ्या चेतनं संत स्वजनः आचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रति सिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासती रचंत पुरख है कटंब लीला अनित आसा बिख्या बनोद परमहंत परमहंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करुणामय हे देहबे हे रसगे मदर प्रिय त्वं सात हतं परम बादं वर्त इथ है सुध असरण है गोविंद दामोदर माधवी गर्भंत नारी मधुन मतं बलवंत बलात् कारण है चरण कमल नह पजंत त्रिण समान त्रिग जन्म नह हे पपील का ग्रस्ते गोविंद सिमरन त्वं तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंगता मेरं सहकंगता हरियं बूडंगता तरियं ऊणंगता परियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं ब्राह्मण है संग उदरं ब्रह्म कर्म जे पूर्ण है आत्मरतं संसार गहंते नर नानक निःफल है पर दर्भ हिरण बहु विघ्न करण उच्चरण सर्व जी कह लो लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म कर

वाणी पर हार नह वचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है रहंता जन्म मरणीन रमण नानक हर कीर्तन है पत्थर पुरजीण चढ़ियू नह जड़ियू पेड़ संपता नाम बिहून बिखमता नानक बहंत जोन बासुरो रैणी भावनी साध संगेन लभंतंग बड भागन है हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर नह व्याप।

कसों वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहि महला पंजवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुख हो तोहारिया, मोही देख दर्स नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब दिवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाई, हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाईए, सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवे कंत तां सब किछ पाईए, हर हां कंत बाज शिंगार सब बिरथा जाईए, जिस घर वसिया कंत सावड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराईया, हरे हां जां घर आया कंत तां सब किछ पाईया, आसा इती आस के आस पुराईए, सतगुर भये दयाल तां पूरा पाईए, मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हरे हां सतगुर भये दयाल तां मन ठहराया, कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

आवह सच तना सुपने उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला।

सब जावई औखद नाम अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावनी हर हां हां बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी वैदां संदा संग इकट्ठा होया औख दे आए रास विच आप खलोया जो जो ओना कर्म सुकर्म होए।

मकी दम के हो होती साट रावण हुते सो रंक नह जिन सिर दीने काट प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल।

आन न कतहु जाहि लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम सिंह खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम सिंह सूद न सिमरत अंग प्रगट भयो सब

संगी पजह गोविंद कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आ।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार। कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार।

की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जाने कोई, ऐसे मरने जो मरे बहुर न।

हजार हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड हैवरी ऊपर शतर।

अजो सो नाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यो कांचुरी पोयांग, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट।

कोई सांझा करे कबीर सियों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो पढ़बे स्यों पल जोग भगत ना छाडो।

शरीर थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए टोगने ना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते भलो।

फैसलों की कुकर भली साकत की बुरी माए ओ नित सुन हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए कबीर।

कंठ में चूक है सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय, पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं

पति पकारे चेह चढ़ी सुन हो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दह दिस जाए जो जैसी संगत मिले।

अहम हुए चार पुरख दोए नार, कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठोर, जिन हर का नाम ना चेतेओ

आए जिन हर का नाम ना चेतेओ बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

इसते मुख में पर है रेत रास बरानी राखते खाया घर का खेत कबीर साधु की संगत रहो जौ की भूसी खाओ हुन हार सो होए है साकत संग ना जाओ कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत साकत कारी कांबरी तो ये हुए ना सेत कबीर।

आई सर्पन हुए कह अवतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के ओहो ही राखे नार गद ही हुए कह अवतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी, पवित्र हुए गोग्राम कबीर सोई कुल भली, जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै, सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन, लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या भली, जो हर सिमरत दिन जाए कबीर।

आए जोत बिना जगदीश की जगत अलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोय पाछे पाओ ना दीजिए आगे हुए सो होए। कबीर जग बांधो जेह जेवरी ते मत बंधो कबीर जय है आका नून ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो

स्वांग तार भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। कबीर कागज की ओ भरी

ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते भली मधु करी संत संग गुण गाय कबीर पाटल ते उजर भला राम।

आए मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया शब्द जो बाह आएक लागत ही भुए मिल गया परया कलेजे शेक कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागई ज्यो बांस बजाइए फूक कबीर है गै बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पतंत्र ना पुज्जै

ਘਾਟ ਜਬ ਹੀ ਪਾਈਐ ਪਾਰਖੂ ਤਬ ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਟ ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ ਐਸਾ

दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जेहे मार्ग पंडित गए पाचे परी बहीर, एक अवघट घाटी राम की तेहे चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी जब

असंत मने आगर कोई अंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोई कै जाने आपन तनी कै दास देवानी होए कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा गर पानी पया जाए मिले ओ ढल कूल।

के बिन मिले पलट भई सब खेहे। जह अनपौ तह भय नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कह संत।

पास चोट सहारै शब्द की पास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिन साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिम

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतक हार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक कह मिल गया।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद

आए कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाई साई मुझसे लर परया तुझे किन फरमाई गाय कबीर हज काबे हुए हुए गया।

मान में पल्ला ना पकड़े कोई, कबीर धरती अर आकाश में दोए तू बरी अवध, हक दर्शन संसे परे हर चौरासी ही सिद्ध, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं।

मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू कबीर।

कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार। कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परापूर्व ली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टोले दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए। महला पंजवा कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठ ताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए। महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर बै सहगाए धरती भार ना ब्या।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे शी पोषाय ले राम ना लावो चीत।

कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आ हर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाह।

तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साद है, जिन तजया बाद विवाद, कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक ना अवकट काट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे।

बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारो बेदो माही। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर,

ताची सरसों पेल कै ना खाल पई ना तेल, टूंडत डोल है अंधगत हर चीनत नाही संत, कह नामा क्यों पाईए बिन भगत हो भगवंत, हर सो हीरा छाड़ कै करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख है रविदास, कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करह ताको बड़ो अपाग। सलोक सेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ है धन वरी।

कंत सियों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे टुई ना लह पेयह नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई धन।

कितनी जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

मिट्टी पई अतोलवी कोए ना हो सी मेता परिदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धर साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना परिदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार।

पी वह उड्डर संधि डंज हंस उडर कुदर पया लोक बडारण जाय गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाय चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

अस फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरीसता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी।

चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौहणी, दुनी सुहावा बाग। नौबत वजी सुबह सिउ, चलन का कर साज। फरीदा रात कथूरी वंडिया, सुत्या मिलै ना पाऊ। जिन्ना नैण निंदरावले, तिन्ना मिलन को आऊ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग। ऊचे चढ़कै देखिया, तां घर करे हा अग। महला पंजवां, फरीदा भूम रंगावली, मांज वसूला बाग। जो जन पीर निवाजिया, तिना अंचना लाग। महला पंजवां, फरीदा उमर सुहावड़ी, संग सुमनड़ी दे। विरले केई पाईयन, जिन्ना प्यारे ने। कंदी

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख हुए।

फरीदा हो बलिहारी तिन पंखिया जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास फरीदा रुत फिरी वण कंबिया पत झड़े झड़ पाहे चारे कुंडा ढूंढिया रहन कथाऊ नाही फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरे जिन्नी वेसी सौ मिले सही वेस करे महला तीजा काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे नानक घर ही बैठिया सौ मिले जे नियत रास करे महला पंजवा फरीदा गर्भ जिन्ना वड्याईया धन जोबन आगाह खाली चले धनी स्यो किबे ज्यो मेहा फरीदा किन्ना मुख डरावणी जिन्ना वसारियों नाऊ एथे दुख कनेरिया अगे ठौर ना खां फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जे बंदड़ो मोयो जे ता रब वसारिया ता रब ना विसरियो महला पंजवा फरीदा कंत रंगावला वड्डा वे मोहताज अल्लाह से तीरत्या इहो सचावा साज महला पंजवा फरीदा दुख सुख एक कर दिल ते लाहे विकार अल्लाह पावे सो भला तां लभी दरबार महला पंजवा फरीदा दुनी बजाई वजदी तू भी वजह नाल सोई जियो ना वजदा जिस अल्लाह करदा सार महला पंजवा फरीदा दिल रखा इस दुनी स्यों दुनी ना कितै कम मिसल फकीरा गाखड़ी सो पाईए पूर करम पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जागन लहन से साई कन्नू दात दाती साहिब संधिया क्या चले तिस नाल एक जागन दे ना लहन एक ना सुतिया दे उठाल टूडेंदिये सुहाग को तौ तन काई कोर जिन्ना नाऊ सुहागनी इन्ना चाक ना होर सबर मन कमान ए सबर का नीहणो सबर संदा बाण खालक खता ना करी सबर अंदर साबरी तन एवै जलेन होण नजीक खुदाई दे भेत ना किसै देन सबर एहो सवाओ जे तू बंदा दिड़ कर है वध थी वह दरियाओ टुटना थी वह वाहड़ा फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीत इकन किन्न चालिया दरवे सावी रीत तन तपै तनूर ज्यों बालन हड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री निहाल हौ टुनेंदी सजना सजन मैंडे नाल नानक लख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाऊ डुब मुए बग बपड़े सिर तल उपर पाऊ मैं जानिया वड हंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर धरी जे तिस भावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल पचास इहो तन लहरी गड थिया सच्चे तेरी आस कमण सो अखर कमण गुण
कवण सो मणिया मंत कवण सो वेसो हौ करी जित वासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणे वेस कर तां वासिया भी कंत मत हुंदी होए आना तान हुंदे होए नताना अणहुंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए एक

भत हर अंत नाही पारावार। कौन है करै विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार। जानन

आप ही तारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार।

पार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावह बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुमह मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिए दूसर आन ना अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाई जे रसन चाखियो ते जन तृप्त अगाय जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सबा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अभुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न पवै अमुलो जेहे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन ना आए कवन जोग कौन ज्ञान त्यान कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तेरे

पौ जल तरना बिनत करूं अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाऊ भगत एहो मन ठहरावे बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बड़ो अभमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हर्तानी।

अल्प सुख बंदन कोट जनम कहां दुख पाऊं, सिख्या संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रौ, रंच करेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार करी, खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी, मात पिता भाई अरबंदप बूजन की सब सूझ परी, वर्तमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यों मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपन।

ज्ञान हे भगवंत कृपा कर तारहु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सहन मीत सुत पाई।

सगल बेदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीनानाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझ समझावत माया रंग बरंग करत ब्रह्म मोह कै कूप गुबार पर्यो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर पर्यो है दह दिस ताए महा बिखिया को।

रोग ग्रसियो, जाम दूतन दान मृत मरियो है, अनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरियो है, प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है, गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी, औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी, काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी, स्नान दान तापन सुच क्रिया, चरण कमल हृदय प्रवतारी, साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी, ओट गही स्वामी समर्थ है, नानक दास सदा बलिहारी, आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात, विदे मन दर्स मग, पावक जरियो ना जात, रहियो जन तूर लग, नीर ना साकस बोर, चलह हर पंथ पग, नानक रोग दोख अग मोह, छिदे हर नाम खग, उदम कर लागे बहु पांति, विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ, भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते, सूखम देह बंद है बहु जटुआ, बिन हर भजन सगल दुख पावत, ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ, पूजा चक्र करत सोम पाका, अनक पांत

दुर्त निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल

परमेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सदाधिक मन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खत दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारस आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल बखाणियो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तै मानियो सत जुग तै मानियो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल।

पहुंचन भगत बेन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर ना जाने सुख देव प्रीख्यत गुण रवे गौतम रिख जस गायु कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायु गुण गावे है पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुक्म सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवे जेन चक्रवे कहायु गुण गावे बल राऊ।

वर्ज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार काल

सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर समरार दृष्ट धरत तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध बनासन लोभ मोह वस करन सरन जाचक प्रतपालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन।

खवै कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचियो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परसे कल समुल वै।

0: है
1: नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

सारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्ब सिधि कव जन कल सुबुद्धि कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव किरण प्रगट संसार है साख तरोवर मबल सरा उत्तर दक्षिण है पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारण अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाज समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अमरीक भवजन तरिया।

नाम नावन नाम रस खान हर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुर सेवियो जिस पसाए गत अगम जानी कुल संभूह समुद्धरे पायो नाम निवास सके अठ जन्म कल उचरै गुर परसेओ अमर प्रगास बारज कर दाहिणै सिद्ध सनमुख मुख।

मुखों भगत उच्चरे अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्व इच्छ तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै।

जे मत गही गै देव, जे मत नामै सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीरह जानी। रुक मांगद करतूत, राम जंपो नित भाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे, सो मत जल जानी जुगत, गुरे अमरदास ने।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असासह। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुकह। गुरु अमरदास परसीय अपौ लभै गौ चुकह। एक बिन

दृढ़ नानक संग रहेउ ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहेउ तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियु निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाई भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत है तार नानक कुल निम्मल अवतरियु गुण करतार उचरै गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करूं साहिब की सेवा जब गुरु देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान

थे। सन्यासी तपस्या है मुखों ए पंडित मिठे। वर्ष एक हों फिरियो किने नहों पर चो लायो। कहते हैं कहती सुनी रहत को

सनाह ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनक कर गहियो भगत सील है सर लड़ियो तै निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्डियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिख

सुख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अवगत त्यायो

कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भव भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुरु रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन।

माणे नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायु गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायु संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मगना हुटै संयम सत संतोख सील सनाहुम फुटै सतगुर प्रमाण बिदनै सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तैं अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नवनिध नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागे।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तैं जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भए सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै तैं

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूथ समाणे अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक।

रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तार है, शब्द रिद विचार है, काम क्रोध खोए जियो, जियन सभन दाता अगम ज्ञान

पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो धर्म कर्म पूरै सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै।

अहंकार अकथ कथनहार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत त्याई।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास रड जिसह धार्यो तरत अर व्योम अर पवन ते नीर सर अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सप्त समुंदर के धार्यो त्रिभवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो हो कंचन भयो शब्द गुर सरवण है सुनियो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारे पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बीचारे काठो श्री खंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर भए

क्या कीजै जाम गुरु होए वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच है घर।

ते अकियत संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाध शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत त्या

से पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर बिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सोदामा अपदा ते राखिया गनका पढ़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए

शब्द हर हर जपै नाम नाव निध अपै रसन अहनस रसै सत कर जानी ओह हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओह बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओह ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुगद मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बान निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

पाया, जग जन्म मरण भगा, ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जिन जन कै, तिन कौ पदवी उच भई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया, दिव दृष्ट कारण करन, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, प्रताप सदा गुर का घट घट, प्रगास भया जस जन कै, एक पढ़ है सुन है गाव है, प्रभाते है कर है स्नान, स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह, रहया पूर बहु विद वर्णं, सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारन तरन, जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी, ते जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सत संगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन

देख रूप अत अनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

काल मुकट शीस मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाखे अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो, अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो, सत साच श्री निवास आद

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर

कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास कहो वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास कौ।

धरियो गुर हाथ तीन भवन भरपूर रहियो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुर है नर गण गंधर्व खोजंत फिरे अविनाशी अचल अजोनी संभव पुरखोत्तम अपार परे करण कारण समर्थ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहु वाहु कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा उब भगत हर के जो गण अम्बरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर भणं तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तैं हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनं बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणं कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल

भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मह तै हर परम पद पायो जेहे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटह खिन जेहे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जेहे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जेहे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निद पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करहो जेहे सतगुर लग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरहो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारू दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीर्त जो संत चरण मुड़ लाग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन

आयर तिन शब्द सुरत की नीवर खाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

दंड लोभ अपमान स्यो झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने भाव सागर बंध्यो सिख तारी सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगमन।

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो उर आद पुरख प्रताख लिखियो अक्षर मस्तक धुर प्रगट ज्योत जगमग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरहु तेह जन जाचो हो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास

देखियत ताम स्यो अपार परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाई रहो मिन राम स्यो अंत न पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी हुन वेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माही तरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर।

परता सिर जय गुरु अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल घोर समुंदर

अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुंदर भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल।

गुरु अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पह गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कमन कह श्री गुरमुयो देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जम पहै।

ससुड़ सोहिया किव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौल हरी से पी तहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण अपार पहला

पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या इनी कपरी झाड़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े डुबण नाही पौ नानक दुनिया कैसी होई सालक मित ना रहयो कोई।

रस रस कस ना जानंत इक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सार अखर का पियो ना लहंत नानक ते नर असल खार जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंद ब्रह्म जप तप संयम कमावे कर्म सील संतोख का रखे धर्म बंधन तोड़े होवे मुकत सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाण बीजे दान

जो लेवै सो देवै नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग, जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग।

जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फै सर्फै सदा सदा एवै गई विहाय नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही लै जाए दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होवै गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै पूरे का किया सब कुछ पूरा कट

भई मर जीवया सहज सुभाई, नानक भगती रतिया हर हर नाम समाय। मन मुख चंचल मत है, अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया, एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे, सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई, दूजे भाए खुआई। जो बन जांदा नदर ना आवई, जर पहुंचे मर जाई। पुत कलात मोह हेत है, अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाई, नाओ वसै मन आई। नानक से वड्डे वडभागी, जे गुरमुख नाम समाई, मनमुख नाम ना चेतनी।

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा। हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्म

पुत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख किरपा धारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक।

रहे। नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे। चिंता तावत रह गए ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है सा तन सुती निचिंद। जिनको पूर्व

नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कम।

सुजई ना सुजै दरबार माया मोहि पलीटिया अंतर अज्ञान गुबार तब नर सुता जागिया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चीतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप उहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द

सदा सदा हर गुण रवहै। अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै। दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया। सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है। जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाम दे। सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हच्छे निर्मले। गुर कै शब्द सुभाई ओना मैल पतंग ना लगई। जे चलन सतगुर पाई मनमुख झूठ ना उतरै। जे सौ धोवन पाई नानक गुरमुख मेलियन। गुर कै अंक समाय बुरा करे सो केहा सिजै। अपने रोहे आपे ही दज्जै। मनमुख कमला रगड़ै लुजै। गुरमुख होए इस सब किस सुजै। नानक गुरमुख मन स्यों लुजै। जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवेओ शब्द ना की तो विचार। ओए मानस जू

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हौ मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया।

बूंद पवै सहज सुभाई जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास ना जाई नानक हर जल जिन पिया तिस भूख ना लागै आई बाबी हा तू सहज बोल सच्चै शब्द सुभाई सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाई आप पछाण है प्रीतम मिले वुठा शह पर लाई चिम चिम अमृत वरसदा तिस ना भुख सब जाई कूक पुकार ना हो गई ज्योति ज्योत मिलाई नानक सुख समन सुहागनी सच्चै नाम समाई तुरों खसम भेजिया।

पास सतगुर मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठै मन तन पर फड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाय चाल चलंबलै।

साहिब सदा हदूर है, क्या उच्ची करह पुकार। जिन जगत अपाए हर रंग किया, किसै विटहो को।

पाई सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे पवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेट हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाह वाह सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाह वाह सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर

नानक सतगुर वाह वाह जिसके नाम प्राप्त होए हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड भागी हर पाया पूरन पर

आया गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए आन दिन रह आनंद नानक सहज समाइए।

सद उजले इत सच्चै दरबार तिन बहंदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले।

कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब शार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग नाथ।

जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लय छाए सतगुर पुरख हर त्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंघाए गुरसिखा की हर धूड़ देह हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बदारियन

हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दड़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गुल गोले।

ਆਏ ਸਭ ਕਛ ਤਿਸ ਦੇ ਵਸ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਭਏ

जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरखे अपार जिसह उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

जिस पास बहते आंसू ही है सब ना दावे सा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कहो नानक हर पज मना जेह बिद जल कौ मीन। दिखियन स्यों काहे रचियो

दिन जो नानक भजे सफल होहे ते काम। जेह बागुन गोबिंद भजहो करन सुन।

माना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कह नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

है भाई चितवत रहे उठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर भावै सो होए।

नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे।

मुद्दा अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टूडी कही अलाप काम

असंख भाओ, असंख पूजा, असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख योग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश भुगत ज्ञान दया पंडारण।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवै जिन सेवै मेरा हर जी, ते हर हा रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडहार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहंतु जी, हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे घर पूजा जी, तब तप है जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत साहत जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे घर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तो जेवड़ अवर न कोई।

तोदे आपे सिरट सब पाई जी, तोदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सत्यार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी।

आओ सहस्ता वनयन नान नयन है तो एक सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बेमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामे जोत जोत है सोए हिद चानन सामे चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावे सु आरती होए हर चरण कामन मकरंद लोभत मनो आनंद नमो आई पे।

आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ। इहो संसार विकार संसेम है तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे।

मद देख फूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आरजा पावन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस घोड़े रसे जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कै कड़ नाम निवास जित बोलिया पद पाई है तो बोलिया परवान फिका बोल विगुचना

तखत अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाईगे साज अतोल हराव प्रभर मंदर सोना इसमय माणक लाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोट रीसाल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलखा हरनाव गुर सर सागर भोयतो गुर तीर्थ दरियाव जेत पावे उजली सत सरनावन जाओ पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास पूरे था।

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर में खेल खेलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी सज सौ।

हाव जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए खोटा वणज वणजे मंतन खोटा होए पाही फाते मिर्ग ज्यो दू कणोन तरोए खोटे पोते ना पवे तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पात है खोड ना सीज सकोए खोटे खोड कमावना आए गया पद खोए नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा हर जप लहा अगला निरपो हर मन मा।

सुनना पौन की बाणी, यो मन रत्ता माया, खसम की नदर दिले पसंदे, जिनी कर एक ते आया, ई का रखे पंज कर साथी, नाओ शैतान मत कट जाई, नान के आख राहे पै चलना, माल तन कितकु संजया ही, श्री राग महला पहला कर चौथा, सोई मौला जिन जग मौलिया, हरिया किया संसार।

नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बगस करे, कहना किशु ना जावई, जि पावे थे दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है, सच वडियाई

संतां संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, हरहाव गुरमुख सदा सुहागणी, तिर राख्या उर धार, मिठा बोले निव चले, सेजे रवे पतार, होबावंती सुहागणी, जिन गुर का खेत अपार, पूरे भाग सदगुर मिले, जा भागे का उदय होए, अंतरों दुख प्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर के पाणे जो चले, दुख न पावे कोए, गुर के पाणे विच अमृत है।

अमृत सत्या नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हू परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

अंतर तेरे हर बसे, पुर सेवा सो पाए। अरहाओ सच बाणी सच शब्द है, क्या सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसे, हम में क्रोध निवार। मन निर्मल नाम त्याई है, ता पाए मोख द्वार। हम में विच जग बिरसदा, मर जम्मे आवे जाए। मन मु शब्द ना जाननी, जसन पद गवाए। गुर सेवा ना पाई है, सच्चे रहे सुमाए। शब्द मने गुर पाई है, विचों आप गवाए। अनदन पगत करे सदा, साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन वसया, नानक सह सुमाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी पुरखी सदगुरना सेवयो। से दुखिए जुग चार, कर हुंदा पुरख ना पछाणिया। अभिमान मुठे अहंकार, सदगुरु क्या फिटकया। मंग थके संसार, सच्चा शब्द ना सेवयो। अब काज सुवारण हार, मन मेरे सदा हर वेख अधूर। जन्म मरण दुख पर हर, शब्द रहया परपूर। अरहाओ सच सलाहन से।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से राम विछड़ है, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब सीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर कै शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन शब्द दे सोने, ते सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, होमे विचों कोय, सातन नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा, सच्चे नाय तृप्त होय।

आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले सुमाए, त्री राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अब भला, केत बिद मिले रसकाए, जाय पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रभ आए, कोय वे प्रवाह ना बोलनी, हौ मरमल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुणसार, सज्जन स गुरपुरख है, दुख कड्ढे हौ में मार, हरहाओ गुरमुखियां सुहागणी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वजनर तन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड भागी वड जानिए, जेन हर रस खादा गुर पाए, यो हर रस वणतन सबत है, भागहीन नहीं खाए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मानमुख रहे बिरलाए, कोई सतगुर आगे नानवे, उन्ना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत टोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसया मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन चढ़े फिर आसवे, रैन सवाई जाए, आप कटे नर ना बुझे, नित मूसा लाज रुकाए, गुर मिठा माया पसरिया, मानुख लग माकी पते पचाए, भाई रे मैं मीत सका प्रसोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय न होए, हरहाओ गुरमत हर लिव उबरे, लिप्त रखे शरणाए, ओनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पद पाए, गुरमुख दर गए मनिए, हर आप लय गल लाए, गुरमुखा नु पंथ प्रगटा, दर ठगन कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिवलाए, अनख तुनी दर वज दे, दर सच्चे सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाया, तिना सबको कहे साबास, तिनकी संगत दे प्रभ, मैं जाजक की अरदास, नानक

तू पतिया आएगा, सो सन तुझे अनित, अहंकार करे अहंकारिया, व्याप्या मन की मत, दिन प्रभ आप पुराया, नाच जात न पात, सगुर पुरुख मनाया, इको सज्जन सोए, हर जन का रखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर न पावे कोए, नान करता रंग हार, सब जग में चानन होए, श्री राग मोहल्ला पंजवा, मन बिलास बहु रंग घणा, दिट पूर खुशियां, छत्र तार बात साइया, विषय से परियां, पाई रे सुख साथ संग पाया, लिखिया लेख दिन पुरख बिधाते, दुख सहसा मिट गया, हरहाओ जेते थार संतरा, तेते पवे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए न संग होए, वरते अफरिया, सबको वसगत कर लाए ओन, बिन नावे खा कर लिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर करया, गरम बारी वड साबी, तब नानक सुबन थिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिए, विन मुझे मुगद अजान, तो प्रचेतन आयो, छुट्टेगी बेबान, सतगुर सेती चेत लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैण, लगा कित को फकड़े, सा मुगदी चली रैण, अरहाव उदम करे पस पंकियां, दिसे नाही काल, ओते साध मनुख है, पाथा माया जाल, मुगते से ही पालिए, जे सच्चा नाम समाल, जो कर छड गवावना, सो लगा मन मागे, जिथे जाए तुद वर्तना, जिसकी चिंता नागे, फाथे से ही निकले, जे गुर की पैरी पागे, कोई रख न सकई, दूजा को न दिखाए, चारे कुंडा पाल के, आए पया सरनाए, नानक सच्चे पातशाह, डुबदा लया कढ़ाए, श्री राग महला पंजवा, कड़ी मोहत का पौना, ताज सवारन हार, माया काम व्यापया, समझे ना ही गावार, उड़ चलिया पछताया, परया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंधी पागे, जे हो भी पूर बिल गया, ता गुर का भजन कमागे, हरहाओ, हरी नाही, न डडरी, पक्की वड्डन हार, लैले दात पोतया, लावे कर तैयार, जा हो हुक्म किरसान दा, ता लुण मिणिया खेतार, पहला पैर कंधे गया, दूजे परसोया, तीजे चाव चखाया, चौथे पोर पया, कद ही चेतन आयो, जिन जियो पिंड दिया, साध संगत को वारिया, जियो किया कुर्बान, जेते सो जी मन पई, मिलिया पुरख सुजान।

गुरपूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश।

संग समाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेस सच स्यों मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत पाए आचरज रूप न

संता संगत मानस प्रीतम भगत सिंध जिन सेव्या प्रवे अपन सोई राज नरेंद्र अवसर हर जस गुण रावण जित कोड मजन।

मेरा निर्मल इस दिन रहन ना जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सहबन अवर ना जाए। इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तल गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडा।

क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों सब फुल्ला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी परमतया दुलाभ जन्म पायो ए नारक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए श्री राग महला पंजवा तित्तर वसे सोहेलड़ी।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रव निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, तू ते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। कैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत

सबसे दे आधार सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल हरहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़भागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार गुर की महिमा अगम है क्या कथ कथन हार जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सल गुर पास पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सा ते नाए गुर के चरण सरेवणे तीर्थ हर का ना

आवे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ू गुर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अवर दूजा अवर न कोय श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानी है।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना इया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तिर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पय पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द ते सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सब दरते से जिन गए हाऊ सब बलिहारे जास, चौदुग मैले मल भरे जिन मुख नाम न होए, भगति पाए विगुणिया मोकाला पद खोए, जिन्नी नाम सारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप शाने कर।

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये जो बनबाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार। दू कणो दोहा गणी ना कर सेज पतार। मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए। हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सजाणीए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए। मन तन साज विगसया कीमत कहन न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार। इकत तागे राह मिले काल मोतियन का हार। संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए। वा पारी बन जा रहा आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए। पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कथने कहन ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेविए गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाईए पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन घर

मैं तुझ बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होय। हरहाओ नाम सलाही रंग स्यों, गुर के शब्द संतोख। जो दिसे सो चलसी, कूड़ा मोह ना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख। आखने आखे केतड़े, गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए। जुत पावे से पले खोटा खरा न कोय। कुर सरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास। अच ताद पासा की कड़ी गए शब्द विगा।

राम नाम तन निर्मलो गुरदाद करे प्रसोय रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार। आप चिड़ाए छुट्टिए आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धियां पूत संजोग नारी देख विगासीए नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामण सागत डोल डोलाए बार टूंड गुचीए कर्म वस्त सुधाए मन मुखो में कर्म सी गुरमुख पल्ले पाए। साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का इहो तनो अग्नि पास पिराण पावणे के वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगीए मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तिसिया किए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम हुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए ज्यो सुपने निस पुलिए जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारिए सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाईए जो बारक दूते माए बिंदल कमसो नाथिए।

सिद्ध बह दे सदान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार तार कूच कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आमन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख असमार तरती चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चले निस सा चले तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदिया श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

क्या माया कर्म कमाए तो सुख ए जो बद्ध है हम में कर्म कमाए बिन शब्दे परम न चूकई ना विचों हम में जाए बिन प्रीति भगत न होवई बिन शब्दे थाए न पाए शब्दे हम में मारिए माया का प्रम जाए नाम पदार्थ पाइए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वछल हर मन मसया सहज मिलया प्रसोए नानक शब्दे हरसा लाइए कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभु कीना अपे परम पुलाए मनम कर्म करे नहीं बूझे बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी असी जग में चानन कर्म वसे मन आए।

परम भुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो पुथा जाए। चौथे पद में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए। गुणवंती सलाया, सच्चे सच्ची सोए, उलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। फिर सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे की सोजी पई, सच्चे शब्द पार। आपे बख्श मलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिलावन हार, पूरे शब्द सराई है।

भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुगता तपसी तपह राता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकार पंडित वेद पुकार गृहस्थी गृहस्थ धर्महाता एक शब्दी बहुरूप अवधूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती आ परसा एक लूक न देवह दर्शा एक मन ही ज्ञाता ताट न किन ही कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता सागल उगत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुरचरण पराता एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्री राग मोहल्ला पहला कार तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत न पाया थुर्ग मछ पयाल जियो होंवारी होंवारणे कुर्बान तेरे नाव नो हरहाओ तू संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेख कीता अपना तर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नावे नू परतापदा सदगुर बाज ना पायो ता मोही माया जाल दियो सदगुर कौ पल जाइए जित मिले परमगत पाईए सुर नर मुंदन लोच दे तो सदगुर दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानिए जिथे एको नाम खानिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो यो जगत परम भुलाया आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईया से सोहागनी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेवा अंदर रखे अपनी नदर करे निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिले नाम खाणिए सतगुर बाज ना पायो तब तक की कर्म कमाए जियो हो सतगुर विटो कुमाया जिन प्रफुल्ला मार्ग पाया नदर करे जय अपनी आपे लय रलाए जियो तू सबना माए सुमाया तिन करते आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत तरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया तुए कर्म मस्तक तार जियो सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्रभ सब कुछ जानदा।

नाम दान स्नान दड़ाया सा मुक्त हुआ सहसारड़ा। नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो साब सृष्ट सेवे दिन रात जियो। दे कन सुनो अरदास जियो ठोक वजाए सब डिठियां तुस आपे लयन छिड़ाए जियो। हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोई न किसे रिजाण दा सब सुखाली उठियां। इहो हुआ हलेमी रा जियो किम चिम अमृत वर्ष दा। बोल आया बोली खसम दा बहुमान किया तुझ उपरे तू आपे पाए थाए जियो। तेरिया भगता पूछता तेरिया हर लोचा पूर्ण मेरिया त्यो दर्श सुखदात्या। मैं गल विच लहो मिलाए जियो तुझ जेवड़ अवर ना पालिया। तू दीप लो पया लिया तू थार सरंतर रब रहया। नानक भगता सच आधार जियो हौ गोसाई दा पहलवानड़ा। मैं गुरमल उच्च दमालड़ा तब होई छिंज इकठिया। दईओ बैठा वेखे आप जियो वात वजन टमक पेरिया।

पैर विसर गया ध्यान, तीजे पैर रैण कै बन जा रहा मित्र, धन जोबन सो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्र, बदा छुट्टे जित हर का नाम न चेते प्राणी, बिकल पया संग माया, तन सिउ रत्ता जोबन मत्ता,

हर जन्म जंज सुहंदी पेव कड़े घर जब सुहेली विच सौरड़े खरी सुगंधी सौरड़े विच खरी सुगंधी जिन पेवकड़े नाम सुमालिया सब सबल्यो जन्म तिना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा टालिया हर संत जिन्ना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बा बोला हर जन मिल जन सुगंधी हर प्रम मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर सोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर घर भगती काज सुहेला गुर सदगुर दान देवाया खंड वर पंड हर सोभा होई त्यो दान ना रले रलाया होर मनमुख दाज जे रख दिखाले

ब्रह्म विचारया जन्म सवारया, पूर्ण कृपा प्रभ करी, कर गै लीने हर जसो दीने, जोन ना तावे नै मरी। सतगुरदयाल कृपाल भेटत, हरे काम क्रोध लोभ मारिया, कथन ना जाए अकथ सुवामी।

उत्तम नामक जिन श्रेया सब को जियो हरजी सवय प्रतपालदा कर कर मैया सोय तो घर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोह माया चित लाए दे छे छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सकाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सुनाई पाइये बनजारिया मित्रा वडपाग प्राप्त होए हर हाओ संत जनाविन पाइया हर किने ना पाया ना हो विच होमे कर्म कमाम दे जो वेसवा पोत निनाओ पिता जात ना होई है गुर तुठा करे पसाओ वडभागी गुर पाया हर अहेनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ मन हर घर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ हर हाओ जब लग जोबन सास गए तब लग नाम त्याए चल जा नाल घर चलसी हर अंते ले छिड़ाए हों बलेगारी तिन को जिन हर मन उठाया जिनी हर घर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्त घर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन हर घर प्रीत लगाए वडभागी गुरु।

मन हर घर मुठड़ा है। मन हर घर जपन करे हर गुर सुननाई पज पो जिंदु साब केल विख दुख पर हरे हरहाओ। धड़कड़ रमैया मन मसे क्यों पाईए कित पत गुर पूरा सदगुर पेटीए हर आए वसे मन चित मैं तर नाम आधार गए।

मीना गए आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हथा विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंगा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर तुद हो बार किश नहीं गुरसबदी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद न सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम हुणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसदा मुल दूजे लगे पचमुए